उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं। इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है। इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके। काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव। कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में, भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है। बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव, कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वप धरो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है। अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो। देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे, उसको जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर

सकते हैं? नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है। जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर डांट कर धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए, आप कुम्हार की मिट्टी हैं। अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे? नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग बरसे, रंग कब बरसता है, होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो, तो का रंग बरस रहा है, काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम के होली फिर नयो नेह नव रंग नयो रस, ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुअत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
और गुरुदेव किसको ले रहे, जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे हैं। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे। गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत, बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है, वचन आधीन सदा रहें। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं। मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो, तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहां की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जू हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है, ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा।

एक वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या? सब भोग जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है। प्रभु जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सह रहा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो। क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है।

आग जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और आह्वान का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा। देखो जैसे दूध पीने से संध्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं। खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं, उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं। यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं। हमारे रहने

0: पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे विलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है। एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं जब वो कुंभ पड़ता है। प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम। दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हाहा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान श्री जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं। ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं। बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे। हमारी ऐसी कुछ दशा है, शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है गिर जाएगा तू, ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा, जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है, मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर, तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे को ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनी आप, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरंते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जू से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में है, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते हैं। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के, हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है, लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे ना मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ लैला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई, क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी, जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मजनू, समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है, देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो, बोले नहीं ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया, हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: को जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ,
1: टाइम जा रहा है भाई तो करे रिस्टार्ट।

0: restart. नया नजरिया
1: with RJ Palak. आज हमारे पास बात करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी दिल की बात कहने के लिए कोई क्यों नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। आज बीके सिस्टर्स के साथ बात करेंगे अकेलेपन की। वेलकम मॉम।
2: ओम शांति।
1: ज्योति जी, पहले से ज्यादा हम आज हर चीज से कनेक्टेड हैं, फिर भी हमें अकेलापन महसूस होता है, ऐसा क्यों?
3: क्योंकि आज हम सबके बीच रहते हुए भी हम सबके साथ होते नहीं है
1: जी।
3: और इसका बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं कि पहले के समय में जब हम होते थे तो टेलीफोन्स होते थे, तो जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मैंने यहाँ तक कि अगर अपने पास फ़ोन नहीं है तो हम दूसरों से भी कनेक्टेड रहते थे, पड़ोसियों से भी कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उनके घर में शायद फ़ोन है और हमारे पास आना है तो उनसे कनेक्ट रहते थे। आज की डेट में क्या हो गया, आज घर में चार मेंबर हैं, चारों अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में जो है इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। तो आज जब एक परिवार के चार सदस्य ही आपस में बैठ के अकेले हैं, तो आप कितनी भी भीड़ में आप चले जाएं। पहले हम ट्रेन का सफ़र करते थे, मुझे याद आता है जब हम बचपन में जाया करते थे ट्रेन से, तो वहाँ पर क्योंकि फ़ोन तो होते नहीं थे, तो ट्रेन के सफ़र के दौरान ऐसा आपस में रिलेशन बन जाता था कि लास्ट तक जाते जाते लगता था कि फैमिली दूर हो रही है। और आज के टाइम में पड़ोसी भी क्या है ये पता नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी दुनिया एक डिब्बे में सीमित कर दी है। इसीलिए आज हम सबके बीच में भी रहते हुए हम अकेले हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं, हम उनसे शेयरिंग कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं, और समय आने पर वो हमारे नज़दीक नहीं होते हैं, तो इसीलिए आज हम अकेले हो गए हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कभी कभी ना सबके बीच होते हुए भी मन के अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस होती है। शोभा जी, इसी को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोगों के बीच रहकर भी हम अंदर से अकेला क्यों फील करते हैं?
1: ऐसा इसलिए होता है कि हम सब लोगों के बीच में तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में जो थॉट्स का जो तूफान चल रहा होता है उसमें हम उलझे हुए होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, उसका हम कहीं से सोल्यूशन नहीं पाते हैं। लोगों के पास बैठते हैं तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। तो उनके बीच रहकर भी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे मन में तो वही सब बातें चल रही होती हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में रह के भी अकेले अपने आप को महसूस करते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: हम दूसरों से कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से कनेक्ट होना भी भूल जाते हैं? ज्योति जी, क्या खुद से कनेक्शन कम होना भी लोनलीनेस की एक वजह हो सकती है?
1: अगर हम पहली सिचुएशन ले क्या कि कोई मेरे नजदीक नहीं है अपना, उससे भी हमें लोनलीनेस फील होता है, लेकिन वो इतनी देर तक का नहीं होता है, क्योंकि आजकल गैजेट इतने हो गए हैं कि दूर व्यक्ति भी दूर नहीं लगता है। लेकिन जो असली लोनलीनेस की बात है वो है हमारे अंदर का खालीपन। हम अंदर से खाली हैं, हम अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तलाश हम अपने अंदर ना करके हम बाहर घूम रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें खुशी शायद मेटलिस्टिक दुनिया में मिलेगी, और उन्हीं के अंदर ही हम अपनी खुशियों को तलाश रहे हैं, और इसी वजह से आज वो चीज़ें तो हम कहें कि कुछ समय के लिए हैं, जिसको अगर हम आध्यात्म की भाषा में कहें तो खत्म होने वाली चीज़ें, विनाशी चीज़ें हैं, उनके पीछे हम जा रहे हैं। लेकिन असली खुशी हमारी कहाँ है? क्या हम असली चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं? क्या मेरी खुशी की कोई वस्तु, व्यक्ति या जगह ही कोई जो कहीं आधार हो सकता है? उसका बेस ही हमने जब ऐसा लिया हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मैं खुश हूँ, किसी ने मुझसे मीठा बोला तो मैं खुश हूँ, किसी ने मेरी पसंद की चीज़ बनाई है तो ही मैं खुश हूँ, अगर नहीं है तो मेरा मूड ऑफ है। तो जब हमारी चीज़ें विनाशी चीज़ों पर हम रहते हैं और अंदर से अपने आप को जानते ही नहीं है कि मेरी खुशी की वजह क्या है, हम कहाँ ढूंढे, तभी ही जाकर के वो लोनलीनेस, उसी को ही खालीपन, एक्चुअल में लोनलीनेस वही है जो अंदर से हम बिल्कुल खाली हैं, अंदर से हमने अपने आप को किसी भी चीज़ से भरा नहीं है, लेकिन बाहर की चीज़ों से हम भरपूर हैं। तो अपने अंदर भरे सुख को, शांति को, और भरपूरता है, भरने की जरूरत नहीं है, भरपूरता है, बस उसकी तरफ नजर करनी है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: आज के समय में हम अकेले तो हो गए हैं, अकेले कमरे में भी बैठते हैं, अकेले कहीं भी अपने आप को रखते हैं, लेकिन अकेले होते भी हमारे मन में बहुत सारे विचार या बहुत सारी बातें, और नहीं तो आजकल मोबाइल हम सबके हाथों में हो गया है, जिससे हम अकेले होते भी अकेले नहीं होते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है हमें एकांत में जाने की। एकांत का मतलब होता है एक के अंत में, अर्थात हम खुद अंदर अपने भीतर उतरें, अपने अंदर की जो कमी या कमजोरी है उसके बारे में हम खुद ही अपने आप को चेक करें। जब हम अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तो हम अपनी कमियों को भी समझ पाते हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी हम देख पाते हैं, और फिर हम खुद से भी कनेक्ट होते हैं। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अंदर एक पीस जिसकी हम ज़रूरत महसूस करते हैं, एक एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमारे अंदर धीरे धीरे आती है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है एकांत की, अकेलेपन की नहीं, एकांत की।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: बी के सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
0: ओम शांति।
2: दोस्तों, कभी कभी ना हमें ज्यादा लोग नहीं, बस एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए होता है, और सबसे जरूरी कनेक्शन खुद के साथ होता है। मैं हूँ आज पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए नजरिया में एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो वीकेंड का काउंटडाउन हो गया शुरू। आई नो फ्राइडे वाली एक्साइटमेंट अभी बाकी है, लेकिन तब तक के लिए एंटरटेनमेंट का डबल डोज देना तो बनता ही है ना। भाई अंजलि ऑन एयर हो गई है, सुबह 7 से 11 बजे तक आपके साथ रहने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें आज मैं लेकर आई हूँ। बॉलीवुड का तड़का मिलेगा यहाँ पर, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे, साथ ही हेल्थ और फिटनेस की बात भी होने वाली है, और साथ ही आपके शहर में आज मौसम का क्या हाल है, ट्रैफिक क्या कहता है, और साथ ही साइबर स्कैमर से खुद को किस तरह से बचाना है, ये सब बताने वाली हूँ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाली चाय की गर्म गर्म सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: आप रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग्स और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग्स और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवार प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, MMA, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। The Warriors Club and Kickboxing, special female trainers facility and kids friendly. Visit us at Sector 14, Faridabad. Call now 8766-22-0036.

हाँ जी, फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। देखिए यार, हाल चाल बेहतर है, लेकिन इस बेहतर हाल चाल को मैं और भी बेहतरीन बनाने के लिए आ गई हूँ। बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, बहुत सारी चीजों के साथ आई हूँ आज। लेकिन सबसे पहले ना बात कर लेते हैं आज के वेदर की। तो मौसम क्या कहता है? तो देखिए, अगर मैं मौसम की बात करूँ, वेदर की बात करूँ, हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 34 डिग्री और मिनिमम रहने वाले 25 डिग्री।

विंड स्पीड आपको 5 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 67%। तो आपको पता है ना क्या करना है भाई, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं थोड़े ही देर में।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिया, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया एक बार आपको वो भी बता देती हूँ, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। तो भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें एक पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना, ना मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है, और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए है या बाहर वालों के लिए है। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज मैं एक चीज सोच कर देखेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रील से ब्रेक लिया जाए तो क्या होगा। मैं बताती हूँ ना क्या होगा। ना तो सुबह उठते ही स्क्रोलिंग होगी, ना एक आखिरी रील वाला झूठ होगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना एक स्टडी लेकर आई हूँ। तो स्टडी में ना एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों का ब्रेक लेने पर ना आपको मिल सकता है ज्यादा टाइम, बेहतर मेंटल क्लैरिटी, मूड में सुधार और सेल्फ स्टीम में बूस्ट। तो देखिए भाई, बात तो फायदे की है यार, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं ना, एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, डेटा तो छोड़ दो यार, डेटा तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पता है हमारा फोन भी इफेक्ट होता है, हमारी फोन की बैटरी भी खराब होती है। ये तो चलो दो ऐसी ऐसी बातें थी कि ठीक है, जिनका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया? हम अपनी स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम किसी रील को पूरा खत्म होने तक का भी इंतजार नहीं करते। अब आप सोचिए कि हमारा फोकस्ड करने का जो तरीका है वो कितना खराब हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग कितना खराब हो गया, और हमने अपने माइंड पर कंट्रोल भी खो दिया। हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं हमें लगता है वही सच्चाई, जिसकी वजह से हमें इतना स्ट्रेस भी ले लेता है कि यार सब घूम रहे हैं, सबकी अच्छी जॉब हो रही है, सब अच्छा पैकेज ले रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। ये चीजें ना कंपैरिजन को भी लेकर आती है। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया डिजिटल डिटॉक्स करने का खुद को। और स्टडी में ना ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने वालों ने ना स्ट्रेस घटने, ओवरऑल वेलबींग बेहतर होने जैसे फायदे भी देखे हैं। तो शायद 7 दिन रील से दूरी, बोरियत नहीं ब्रेन की छुट्टी हो सकती है, और साथ ही आपको मिल सकता है एक बढ़िया रीस्टार्ट, एक किकस्टार्ट, जिससे ना आप नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आ सको। इस बार आपने करना क्या है, इस बार ना आपने एक हफ्ते का चैलेंज लेना है खुद से, कोई रील नहीं देखनी है, कोई रील बनानी भी नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करना है खुद को, और फिर देखेगा कि

0: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु, 70+ एग्जीबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जीबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु, बिगर, बेटर, बोल्डर।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, टाइकवांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766 22 00 36।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितीश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। रेगुलर रनिंग ओवरऑल बॉडी में सिर्फ कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी बेनिफिट के अलावा मसल्स, जॉइंट और आपके जो बोन्स हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि रनिंग एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिया, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थ्रेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। तो भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10-20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें एक पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से वो अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना ना, मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है, और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

आजकल हर किसी को सोशल मीडिया पर जाना है, फिर चाहे बात की जाए मम्मी बाबा की या बात की जाए मम्मी बाबा के बच्चों की। अगर बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के हर एक मोमेंट को ना सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, क्योंकि वो उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका ये प्राउड का मोमेंट किसी स्ट्रेंजर के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन सकता है? तो देखिए भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो हमसे ही आता है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। और आजकल ना पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन, बर्थडे, इवन वेकेशन तक के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने फोटो शेयर की, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्कूल की फोटो शेयर की है, वहाँ पर सारी स्कूल की डिटेल्स है। आपने जिस वेकेशन की फोटो शेयर की है, वहाँ पर आपकी लोकेशन है। और जिस रूटीन की फोटोज आप शेयर करते हैं, किसी स्ट्रेंजर को ये पता है कि आपका बच्चा दिन में क्या करता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर मन करे ना कोई भी मोमेंट शेयर करने का, तो एक बार रुक कर जरूर सोचेगा कि ये मोमेंट्स आपके लिए हैं या बाहर वालों के लिए हैं। और बस यही कहना चाहती हूँ, इन क्यूट मोमेंट्स को ना अपने जिंदगी में हमेशा ऐसे ही रखिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए, बिकॉज प्राइवेसी एंड सेफ्टी दोनों मैटर करती है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

हेलो हेलो जी। तो आज की फील गुड स्टोरी मैं लेकर आ गई, और आज की स्टोरी ने ना सच में मेरा दिल जीत लिया यार। एक आवाज ब्रो जूते लेगा, और बस ये जो सेंटेंस है ना, इसने किसी का दिन बना दिया। तो देखिए, कभी कभी किसी का पूरा दिन बनाने के लिए ना बस एक छोटा सा जेस्चर काफी होता है। ये बताने वाली है हमें आज की स्टोरी। तो भाई, सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर अमन शर्मा ने ना एक डिलीवरी पार्टनर को देखा जो कि अपने चप्पले पहनकर डिलीवरी करने के लिए आए थे। तभी अमन ने ना अपने ब्रांडेड शूज निकालकर उन्हें ऑफर कर दिए कि ब्रो जूते लेगा, और बस ये जेस्चर। इतना ही काफी होता है किसी का दिन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये डिलीवरी पार्टनर है ना, पहले इसने शूज लेने से मना कर दिया, लेकिन अमन ने इंसिस्ट किया और कहा कि भाई देखो, ये यूज्ड नहीं है, ये मेरे न्यू ब्रांडेड शूज हैं, तो मैं एकदम न्यू चीज तुम्हें दे रहा हूँ। अमन के इतना फोर्स करने के बाद ना, तब जाकर डिलीवरी पार्टनर ने हाँ किया। इसलिए कहते हैं कि आपकी छोटी सी काइंडनेस ना किसी का पूरा दिन बना सकती है। तो अपने अंदर ये काइंडनेस जरूर रखेगा। लव केयर एम्पति के साथ ना हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

हेलो हेलो जी हैन जी, क्या हाल चाल है फरीदाबाद? देखिए यार, हाल चाल बहुत बेहतर है आई नो, और बेहतरीन करने के लिए ही तो मैं आई हूँ। और ना आज मैं एक वायरल स्टोरी लेकर आ गई हूँ। अगर मैं बात करूँ ना आई लव यू की, तो आजकल के टाइम पर ना आई लव यू कहना बहुत इजी हो गया है, करना ही गया है। एक मैसेज टाइप करना है, एक इमोजी भेजना है, बस प्यार का इजहार हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना उस दौर की, उस जमाने की, तो एक बार इमेजिन कीजिएगा 1964 में किसी ने अपनी वाइफ के लिए 8 feet लंबा हैंड रिटन लव लेटर लिखा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ना ये पुराना लव लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस लव लेटर की फोटो आई, फिर वीडियो आई, और जब वीडियो सामने आई ना लोग पागल हो पाए। और पता है खास बात क्या है? खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये लेटर 8 feet लंबा है, बल्कि खास बात ये है कि सोच के जरा देखिएगा कि इसे लिखने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस, कितने इमोशंस लगे होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द वायरल पोस्ट, ये कपल 62 साल से शादी शुदा है, यानी कि इन्होंने ना एक दूसरे को अपने 62 साल दिया। अब सोचिए कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को माफ किया होगा, कितनी बार इन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया होगा, और इसी तरह करते करते ना आज ये शादी यहाँ तक पहुँची है। और अगर आज प्यार की बात करें ना, तो प्यार सिर्फ डीएम तक रह गया, व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गया। और अगर ज्यादा प्यार किसी को एक्सप्रेस करना हो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर कर देते हैं बस। लेकिन अगर देखी जाए ना, प्यार की असली वैल्यू ना उन शब्दों में नहीं है जो आप लिखते हो, बल्कि उस पेशेंस में जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस टाइम में है जो आप किसी के लिए निकालते हो, उस एफर्ट्स में है जो आपने किसी के लिए किया होता है। तो आज मैं कहानी इसलिए लेकर आई थी, अपने प्यार को ना थोड़ा सा और एफर्ट्स दे करना स्पेशल बना दो। और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद तैयार हो जाओ, क्योंकि इस अक्टूबर डांडिया की रात होगी और भी धमाकेदार। बॉलीवुड का तड़का, ढोल की थाप और मस्ती बेशुमार। ढोल डांडिया 2026, जहां मिलेगा ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट का एक्सप्लोजन और आपके फेवरेट स्टार से मिलने का गोल्डन चांस। जी हां, मिलने आ रहे हैं तुम मेरे हो की स्टार कास्ट गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया। साथ ही मिलने का मौका सोहित विजय सोनी से, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं बल्कि तेनाली रामा भाभी जी घर पर हैं, जैसे शो से अपनी पहचान बना चुके हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज अभी खत्म नहीं हुआ, खुशी बालियान के स्पेशल अपीयरेंस के साथ एंजॉय करिए एक्साइटिंग गेम्स, लकी ड्रॉ, डिलीशियस फूड और शॉपिंग स्टॉल्स। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ले आइए और डांडिया की बीच पर मचाइए फुल ऑन धमाल। 17 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से रॉयल कासा लाउंज फरीदाबाद, प्रेजेंटेड बाय सार्की विंस और व्यापार कारोबार टॉप। वेन्यू पार्टनर रॉयल कासा लॉन, पावर्ड बाय सी दास ग्रुप और रेडियो महारानी। गोल्ड स्पॉन्सर द गोल्डन मिनट हॉस्पिटल। मीडिया पार्टनर पहचान फरीदाबाद। और याद रखिएगा, ढोल डांडिया 2026, जहां ढोल बजेगा और फरीदाबाद झूमेगा।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766 220036।

यार आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा, गर्मियाँ इतनी ज्यादा हो गई, अभी मेरे पंखे को कुछ हो गया यार। अभी नया लगवाया था और फिर मैं अगर पापा को बोलूंगी ना, पापा यार मेरा पंखा चेंज करवा दो, उन्होंने यही कहना कि बेटा तेरे रूम का पंखा ही इतना धीरे क्यों चलने लगता है। तो भाई देखिए, अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही है ना, तो आज मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आई हूँ। अब आप बोले यार अंजलि इतना इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना, तो भाई बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर बात करना। अगर आपके घर का ही पंखा अचानक से स्लो हो गया ना, तो नया लेने की बजाय ना ये जरूर सुनकर जाएगा। गर्मियों में ना अक्सर ऐसा होता है कि फैन की स्पीड कम हो जाती है, तो करना क्या है अपने, सबसे पहले ना नया पंखा लेने से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो फैन में ना हो करना किसी छोटी सी चीज में हो। ये मैंने आज सोचा और तभी मैंने इस पर रिसर्च किया और आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज पंखे को ठीक करने का जुगाड़। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लेड से या फिर जो मोटर है ना उसके डस्ट को क्लीन कराना है, एंड फिर देखिएगा जो बाद में कैपेसिटर है ना, रेगुलेटर और जितनी भी वायरिंग है ना उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि आपके फैन की मोटर बार बार गर्म हो रही है जल्दी और हवा नहीं आ रही, फिर आपको खुद से नहीं करना कुछ भी, फिर ना आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। यानी कहने का मतलब ये था कि पहले खुद से कोशिश करो, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, नया पंखा मत खरीदना। बिकॉज होता है क्या ना, गर्मियों में यूजली यही प्रॉब्लम आती है पंखों में, और जिसकी वजह से ना फटाफट से दुकान पर चले जाते हैं खर्चा करने के लिए। तो देखिए ये ना आज का बिजनेस मंत्र भी है, अगर आपको भी लगता है ना कि ऐसे थोड़ा बहुत पंखा साफ करके आप पैसा कमा सकते हो, तो यार आप कर सकते हो, ये चीज ट्राई जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्राई मिलता है थोड़ी देर में।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया, और ये स्कैम आया कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अभी बस सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम की ट्रैप में फंस गया। और हुआ क्या, सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखे। किसी भी लॉटरी, किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC, OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना, उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.government.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो ये मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

इधर चला मैं उधर चला और बस इसी ट्रेंड के पीछे ना मैं भी निकल पड़ा। कितनी बार बताया है कि वर्चुअल वर्ल्ड से जितना हो सके उतना दूर रहिए, अदरवाइज तो किसी दिन इतनी गंदी वाट लगने वाली है ना, कभी सोचा भी नहीं था। ये जो जेंजीज है ना आजकल, सिर्फ जेंजीज नहीं भाई, सॉरी मैं यार जेंजीज को टारगेट नहीं करी, ये जो आजकल ट्रेंड वाले दुनिया के लोग है ना, ये कहीं भी अपना ट्रेंड शुरू कर देते हैं। अब मेट्रो को ही देख लीजिए, आजकल ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर मेट्रो के दरवाजों पर लोग अपना फोन चिपका कर प्रॉपर एक कंटेंट शूट कर रहे हैं और वायरल भी हो रहा है। लेकिन अब इतने ज्यादा वायरल हो गए कि ये वीडियो सीधा पहुंच गई डीएमआरसी के पास। अब डीएमआरसी ने दे दिया सीधा कंटेंट क्रिएटर को वार्निंग्स, बिकॉज जो ये कंटेंट है वो बनाया जा रहा था मूविंग मेट्रो में, विंडो पर मोबाइल फोन चिपका कर वीडियो शूट की जा रही थी प्रॉपर, जिसकी वजह से ना सिर्फ मूविंग कोच के शॉट्स नहीं आ रहे थे, जो कंटेंट बना रहे हैं ना इंसान उसके भागने के शॉट्स भी आ रहे थे। तो भैया देखिए, अगर जिंदगी से प्यार नहीं है तो ऐसे ही बता दीजिए यार, मेट्रो का नुकसान क्यों करवाना है? अपनी सेफ्टी का तो आपको ख्याल है नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में तो सोचो ना यार, जो सिर्फ घर से ये सोच कर निकलते हैं कि आज टाइम से ऑफिस निकल जाएंगे, लेकिन आपके कंटेंट के चक्कर में ना किसी दिन वो लेट हो सकते हैं। इन चीजों का ख्याल रखिए, अगर कंटेंट बनाना भी है ना तो एक सेफ्टी के साथ फ्रूटफुल कंटेंट बनाइए, सो दैट कि अगर उस कंटेंट पे रीच और वो कंटेंट वायरल होता है ना तो देखने लायक तो बचोगे ना यार। इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ स्कंद माता मदरहुड और नर्चरिंग का सिंबल है, लेकिन जो इंसान सबकी केयर करते हैं वो अक्सर खुद की केयर को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, स्पेशली वुमेन के केस में। तो क्या अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिशनेस है या एक्चुअली फैमिली को बेटर केयर देने के लिए सेल्फ केयर जरूरी है?
1: यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए। समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि सबका ध्यान रखना ही त्याग है और खुद को भूल जाना ही महानता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मंदिर का मुख्य दिया ही बुझ जाए तो वह अपने पूरे प्रांगण को रोशन कैसे करेगा? अपने लिए समय निकालना, अपनी मानसिकता के लिए समय निकालना और अपनी शारीरिक ऊर्जा को हील करने के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, यह तो एक जरूरत है ताकि आप दूसरों को बेहतर, स्वस्थ और सच्ची ऊर्जा दे सके। जब आप खुद से ही प्यार करते हैं तो आपकी केयर में एक अलग ही पवित्रता और गहराई आ जाती है।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय रितु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय रितु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: Get ready, Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Clorox Entertainment present Clorox Garba Night, 17 October, Sham 6 baje se.
0: Venue partner, Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner, Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners, Art of Living, Faridabad. Studio 1, Dance and Fitness.
0: Right partner, Vogue. Women Occupied Cars. Sport partner, Nod Out. Health partner, Ajaveda. Security partner, Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: चमा चम नाचे आजे, धमा दम ढोल बाजे, non-stop हल्ला मचेगा.
1: Tickets available हैं all events के साइट पे. या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, DJ की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ।

यार आज ना एक गाना बड़ा ही जोरों से याद आ रहा है, शादी के मंडप से तो खुद को भगा। हाँ भगा, क्यों बोल रही हो आखिर मैं खुद को भगाने के लिए? बताती हूँ ना, कई लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है ना, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाते हैं, और ना यही किस्मत की वजह से ना एक बॉयफ्रेंड रातों रात दुल्हा बन गया। रात को गर्लफ्रेंड से मिलने निकले थे जनाब, सुबह तक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि दुल्हा बनकर अपने घर वापस आए। तो भाई देखिए, आज का सोशल स्यापा मैं लेकर आ गई हूँ, और आज का स्यापा ना हमें सीधा फरीदाबाद से बिहार के मुजफ्फरपुर तक लेके आ गया। यहाँ पर एक प्रेमी ने रात को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए ना प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसके गाँव में जाकर ना इसे सरप्राइज दिया जाए। लेकिन भाई गाँव वाले ये लोग ना तो अपनी प्रेम कहानी पूरा करते हैं, ना ही सामने वाले इंसान के कहानी पूरा होने देते हैं। फिर क्या था, बस जैसे ही गांव वालों को खबर लगी ना कि अपने गांव में एक आशिक पकड़ा गया है, तो फिर क्या था, गांव वाले ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, लड़के से बिना पूछे बिना उसकी फैमिली से परमिशन लेना उसकी शादी कर दी। बस भाई जो प्रेमिका थी उसकी मांग में भर दिया सिंदूर और बोल दिया कि अब से ना ये आपकी है, चाहे फिर आप इनको गांव घुमाओ चाहे फिर आप इनको शहर घुमाओ, लेकिन बेटा अब इन्हें ना यहां से अपने घर लेकर जाओ। सो बाद में क्या था, बाद में पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारा केस निपटाया, लेकिन तब तक ना शादी हो गई थी। तो भाई देखिए, शादी के मंडप से तो दुल्हन को सिर्फ दुल्हा ही भगा सकता है, और फाइनल इन दोनों की शादी हो गई है। तो रातों रात जो बॉयफ्रेंड था अब वो बन गया है दुल्हा। सीक्रेट मीटिंग इनको बहुत भारी पड़ गई, सीधा ग्रैंड वेडिंग में बदल गई। तो ये थी आज की लव स्टोरी। अगर आप भी इसी तरह की किसी लव स्टोरी को जी रही है ना, तो उसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है शायद से, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

हाँ जी, और बताइए क्या हाल चाल है। देखिए, हाल चाल आपका बेहतर है आई नो, और ये सुनने के बाद ना और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि आज ना मैं एक गुड न्यूज के साथ आई, और गुड न्यूज ना सीधा पहाड़ों से आई है, खासकर हमारे हिमाचल से। तो देखिए भाई, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ना, वो अब 99.55% लिटरेसी रेट के साथ देश का सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट बन गया है, और सिर्फ गोवा की अगर मैं बात करूं, 99.7% उससे आगे है। ये अचीवमेंट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी ULLAS के थ्रू मिली है, जो कि स्पेशली नॉन लिटरेट को बेसिक एजुकेशन और फंक्शनल लिटरेसी देने पर फोकस करता है। अगर मैं बात करूँ ना हिमाचल की, तो हिमाचल अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। हिमाचल ने सोचा है और एक टारगेट सेट किया है कि 2026 से 27 में 100% लिटरेसी लेकर आएगा। तो देखा पहाड़ों से कितनी सारी कहानियां आती है, और अब पहाड़ों से ना ये स्ट्रॉन्ग एजुकेशन स्टोरी बाहर आई है। 99.55% अचीव, बस 0.45% रह गया है, और ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होकर 100% हो जाएगा। तो देखा थी ना आज की ये बेहतर स्टोरी, और ऐसी बहुत सारी गुड न्यूज मैं लेकर आती रहूंगी। लेकिन अभी वक्त हो गया है शानदार सा ट्रैक सुनने का, मिलते हैं ना कुछ ही देर में।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, जी फाइव और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न और थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफी सारी फिल्में इस वक्त ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

0: हाँ जी, गाने भी सुना दिए, बेहतरीन बातें भी कर ली, बहुत ज्यादा हसीन। अब टाइम हो गया है मेरा आपको टाटा बाय बाय कहने का। अंजलि ऑन एयर लेकर आई थी सुबह 7 बजे, अब 11 बजने वाले हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के बाद अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज मेरे टिफिन में क्या है। यार आज मेरे टिफिन में ना भिंडी आई है और मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मेरी मम्मी को ये भी पता है कि जो मेरी बेटी है ना, ये बाहर का खाना नहीं खाती। अगर मैं इसे भिंडी भी दूंगी ना, ये बेचारी भिंडी भी खा लेगी। तो देखिए, आज मुझे तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे लंच को लेकर। अगर आप में से किसी को भिंडी पसंद है ना, तो मुझे जरूर बताएगा। और बताने के लिए ना आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर ना मुझे ये जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम वही खाना लेकर आऊँ, क्योंकि मेरी मम्मी की पसंद यार अच्छी नहीं है खाने के मामले में। और इसी के साथ चलिए अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी बहुत सारी बातों के साथ। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर हमारे शोज को, और बने रहिए स्टेशन पे। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सपनों की बिना एक बहुत अच्छी कहानी है, और एक आज मैं कोट पढ़ रहा था तो मेरे को लगा यार सपने को इस तरह से भी तो देखा जा सकता है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत होती है यहाँ से नारी नंबर वन शो की। और कोड बताएं कुछ इस तरह था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोते समय जो सपने आ रहे हैं वो सिर्फ वो हैं जो आपके माइंड में चीजें पूरे दिन की क्योज और सारी चीजें आपके माइंड में रह गई हैं या कुछ लोगों की यादें रह गई हैं। बट असली सपने और असली अचीवमेंट वाले सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए आप रातों में उठ रहे हो, जिनके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिनके लिए आप दिन भर मेहनत कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करना चाहते हो या अपने आप को उस पोजीशन पे देखना चाहते हो। और एज अ वुमेन, अगर मैं से एक नारी की बात करूं तो वो नारी के जो सपने हैं ना, वो अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। बट अब की जो नारी है वो ये नहीं कहती है, वो कहती है मैं अपने सपनों को भी प्रायोरिटी दूंगी और साथ ही साथ अपने जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी प्रायोरिटी दूंगी और इनका एक बैलेंस बना के लाइफ में चलूंगी। तभी तो हम उसको कहते हैं कि नारी जो है वो है नारी नंबर वन। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: इस अक्टूबर फरीदाबाद में होने वाला है गरबा का ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रेजेंटिंग ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। 18th अक्टूबर को गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग नाइट ऑफ डीजे, ढोल, गरबा, डांडिया एंड नॉन स्टॉप फेस्टिव एनर्जी। ऑफिशियली प्रेजेंटेड बाय ग्लोरिक्स एंटरटेनमेंट एट रोजवुड ग्रैंड होटल सेक्टर 34 फरीदाबाद। टिकट पार्टनर ऑल इवेंट्स, सपोर्टिंग पार्टनर आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद एंड स्टूडियो वन डांस एंड फिटनेस, रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी, सलून पार्टनर हेयर सर्कल यूनिसेक्स सलून नेक्स्ट टू हैमिल्टन टावर सेक्टर 34 बाय अंजू दुबे मेकअप, ज्वेलरी पार्टनर मनीष ज्वेलर्स मेन मार्केट सराय ख्वाजा, गेमिंग पार्टनर नेक्सस गेमिंग, ऑर्थोफिजियो पार्टनर डाबरा ऑर्थोपेडिक सेंटर, क्लोथिंग पार्टनर अन्वेषा डिजाइंस। So, wear your best garba look, bring your people and get ready to dance the night away. 18th October, Glorix Garba Night 2026. Be there, be festive, be Glorix.
2: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
3: कपड़े?
2: हाँ।
3: ज्वेलरी?
2: बिल्कुल।
3: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
2: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय रितु। 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15th अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM।
3: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय रितु, बिगर बेटर बोल्डर।

फरीदाबाद तैयार हो जाओ, क्योंकि इस अक्टूबर डांडिया की रात होगी और भी धमाकेदार। बॉलीवुड का तड़का, ढोल की थाप और मस्ती बेशुमार। ढोल डांडिया 2026, जहां मिलेगा ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट का एक्सप्लोजन और आपके फेवरेट स्टार से मिलने का गोल्डन चांस। जी हां, मिलने आ रहे हैं तुम मेरे हो की स्टार कास्ट, गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया। साथ ही मिलने का मौका सोहित विजय सोनी से, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं बल्कि तेनाली रामा भाभी जी घर पर हैं, जैसे शो से अपनी पहचान बना चुके हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज अभी खत्म नहीं हुआ, खुशी बालियान के स्पेशल अपीयरेंस के साथ एंजॉय करिए एक्साइटिंग गेम्स, लकी ड्रॉ, डिलीशियस फूड और शॉपिंग स्टॉल्स। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ले आइए और डांडिया की बीच पर मचाइए फुल ऑन धमाल। 17 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से रॉयल कासा लाउंज फरीदाबाद, प्रेजेंटेड बाय सार्की विंस और व्यापार कारोबार टॉक्स। वेन्यू पार्टनर रॉयल कासा लॉन, पावर्ड बाय सीदास ग्रुप और रेडियो महारानी। गोल्ड स्पॉन्सर द गोल्डन मिनट हॉस्पिटल। मीडिया पार्टनर पहचान फरीदाबाद। और याद रखिएगा, ढोल डांडिया 2026, जहां ढोल बजेगा और फरीदाबाद झूमेगा।

0: पीछे।
1: हाय गाइस, दिस इज आदित्य। होप यू लाइक द सॉन्ग चांद बालियां। कमेंट बिलो एंड शेयर योर थॉट्स विद मी।
2: ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां।
3: इस बार सिर्फ एक नारी स्पॉटलाइट में नहीं आई है, ये पूरी 11 की जो टीम है ना, ये स्पॉटलाइट में आ चुकी है इस बार। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ और मैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की आज यहाँ पर बात करना चाहूंगा स्पॉटलाइट में, क्योंकि यहाँ पर आईसीसी ने एक और टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और ये इंडियन टीम के लिए बहुत एडवांटेज इसलिए होने वाला है क्योंकि ये वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो इंडिया ही होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर 14 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, और ये इंडिया में होने वाली है तो इंडियन टीम्स को थोड़ा सा तो एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। बट जिस हिसाब से हमारी वुमेन्स इन ब्लू खेलती है, मुझे नहीं लगता है उन्हें किसी भी एडवांटेज की एज पर जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा ही जब पिच पे आती है तो कुछ कमाल करके दिखाती है, चाहे वो स्मृति मंदाना हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, चाहे वो कोई भी फीमेल क्रिकेटर, वो अपना 100% देती है। क्योंकि जब आपकी जर्सी पे लिख जाता है ना टीम इंडिया, तो वो जज्बा, वो जुनून अपने आप बढ़ जाता है। और मैं वो आपसे कहता हूँ ना, नारी किसी भी आगाज में पीछे नहीं है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

शी हैव चेंज द वर्ल्ड में आज जो लेडी है उसने वर्ल्ड को चेंज नहीं किया है, उसने एक ऐसी कम्युनिटी बना दी है जो पूरी कम्युनिटी सिर्फ एक स्पेशी को बचाने के लिए प्रिसाइसली वर्क कर रही है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ और मैं आसाम की रहने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में आज बात करने वाला हूँ। वैसे तो ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, बट इन्होंने एक स्पेशी के ऊपर ऐसा काम किया कि वो स्पेशी आसाम से विलुप्त हो रही थी, पर धीरे धीरे आसाम के लोगों को उससे मोहब्बत हो गई क्योंकि वो उन्हें वापसी कमा के देना शुरू कर चुकी थी। और ये पूरा जो एक कैंपेन था ये अकेले पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा ही बनाया गया था ताकि वो स्पेशीज को बचा पाए। और उस स्पेशीज का नाम जो आसाम में ऐसे स्पेशल है उनका नाम है हरगिला। और वहां पर इनके साथ सीन ये था कि ये जो स्पेशी है ये बहुत बैड स्मेल करती थी बेसिकली, तो इसलिए वहाँ के लोग इन्हें बहुत अवॉइड करते थे क्योंकि ये बाकी पंछियों का मांस खाते थे, इनके घोंसलों से भी वैसे स्मेल आती थी। और कई जगह तो ऐसा होता था जहाँ ये अपने घोंसले बनाते थे वो सिर्फ घोंसले नहीं पूरे के पूरे पेड़ काट दिए जा रहे थे उस टाइम पे। तो इसके सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर पूर्णिमा जी ने ये किया कि उन्होंने आसाम की कुछ लेडीज जो आर्टवर्क करती थी उनसे बोला कि हम ऐसे आर्टवर्क बनाते हैं जिनमें इन स्पेशीज के बारे में हम बताएं, उनकी इमेजेस बनाएं और ये विलुप्त हो रहे हैं उस बारे में बताएं। वहां के ये आर्टवर्क शुरू हुआ और धीरे धीरे धीरे धीरे ये आर्टवर्क इतना पॉपुलर हो गया कि उन स्पेशीज के बारे में और जानने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। और जब वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो पता चला कि ये 800 हैं, तो लोग उन्हें बचाने के लिए एक मुहिम चलाने लगे। और आज ना करते करते भी हरगिला आर्मी में कई सारी वुमेन्स हैं जो अपने मकसद के साथ और सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने के मकसद के साथ आज पूर्णिमा जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बोलते हैं ना, शुरुआत बस एक इंसान से होती है और बाकी सब उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और वो एक कहावत है ना, मैं अकेला ही चला था जान में मंजर, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसी ही कुछ कहानी है पूर्णिमा देवी जी की, और इतने बढ़िया काम के लिए उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा गया है क्योंकि ऐसे एक पंछी जो विलुप्त हो जाता शायद इंडिया से, उन्हें बचाना, उनकी स्पीशीज को और आगे तक बढ़ाना, ये एक प्योर हार्टेड काम मैं बोलूंगा पूर्णिमा जी ने किया था। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

भाई ये चाइना वाले बीच बीच में ऐसी चीजें कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं गुरु, मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चले जाती हैं कभी कभी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और चाइनीज वुमेन्स ने एक ऐसी चीज ढूंढ के निकाली है, ये कह रही है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस में रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी स्किन का और अपना जो लुक है उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे, और ये हम टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से हम थोड़े से डल डल दिखने लग गए हैं, वर्किंग आवर्स में बहुत इन्वॉल्व रहने गए हैं, तो अब हम वर्किंग आवर्स में ही ये सब करा करेंगे। तो वहां पर काम क्या करेंगे आप, ये डिसाइड कर रहे, कह रही नहीं हम मेहनत नहीं करेंगे, हम एक फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाए रहेंगे, सनग्लासेस लगाए रहेंगे, हैट लगाए रहेंगे, जिससे जो भी आसपास की चीजें हो वो हमें इफेक्ट ना करें, और ये हम लगा के तब हम काम करेंगे। हम ये तो कह नहीं रहे हम काम नहीं करेंगे, बट हमें ये सब लगाना अलाउड कर दिया जाए कि हम ये सब लगा के वहां पर काम करेंगे, तो हमारी स्किन जो रूटीन है वो भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ आपका काम भी होता रहेगा। हम आपका काम डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं कह रहे, मैं कहना चाह रहा हूं कि वैसे भी जब हम ऐसे किसी चाइना के इंसान से मिलते हैं ना, मोस्टली फेस वहां पर जो है वो सिमिलर नजर, उसके ऊपर भी आप मास्क लगा लेंगे एक ही कलर के, अगर एक रो में पांच लगा के बैठ गए तो बॉस आके पहचानेगा कैसे कि ये इंसान ये है, ये इंसान ये है। कुछ तो बॉस के बारे में भी सोचो यार आप लोग। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नवरात्र सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ स्कंद माता मदरहुड और नर्चरिंग का सिंबल है, लेकिन जो इंसान सबकी केयर करते हैं वो अक्सर खुद की केयर को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, स्पेशली वुमेन के केस में। तो क्या अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिशनेस है या एक्चुअली फैमिली को बेटर केयर देने के लिए सेल्फ केयर जरूरी है?
1: यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए। समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि सबका ध्यान रखना ही त्याग है और खुद को भूल जाना ही महानता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मंदिर का मुख्य दिया ही बुझ जाए तो वह अपने पूरे प्रांगण को रोशन कैसे करेगा? अपने लिए समय निकालना, अपनी मानसिकता के लिए समय निकालना और अपनी शारीरिक ऊर्जा को हील करने के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, यह तो एक जरूरत है ताकि आप दूसरों को बेहतर, स्वस्थ और सच्ची ऊर्जा दे सकें। जब आप खुद से ही प्यार करते हैं तो आपकी केयर में एक अलग ही पवित्रता और गहराई आ जाती है।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

नारी को अगर अपने लीगल राइट्स के बारे में पता चल जाएगा ना, तो नारी अपने आप में एक और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन के हाईलाइट हो जाएगी। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और एक ऐसे ही लीगल राइट के बारे में आज फिर से आपको बताने जा रहा हूँ, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। मतलब जो इंडियन लॉज हैं उसके अंदर भी इक्वल ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए। देखिए, कोई भी वुमेन है उनके साथ फेयर एंड इक्वल लीगल सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, जेंडर बायस नहीं हुआ जाता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी एक्सेस टू जस्टिस हो, जो मेंस के लिए हो रहा है वही वुमेन्स के लिए होगा। एडुकेशन हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप हो, मैरिज इंट्रीगेशंस हो, या फिर किसी भी वॉयलेशन का एक्ट हो, हर जगह पे वुमेन को इक्वल राइट है, जो राइट मेंस के पास है कंप्लेन करने का, अपने लिए फाइट करने का, और अपनी चीजों को फेयरली और उतनी ही डेंसिटी के साथ अपनी अपील करने का, ताकि लॉ उन्हें उसी लेवल पे आके हेल्प कर पाए। तो अगर आप एक वुमेन हैं तो अपने इस राइट के बारे में आपको बखूबी नॉलेज होनी चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

प्रोग्राम रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए. एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से. और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है. के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट. स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है. बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285. एंटरप्राइजिंग डिवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर.

दिवाली अपनी खुशियों में जोड़िए शॉपिंग का चार्म, फैशन का ग्लैमर और सेलिब्रेशन का म्यूजिक। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। एक्सप्लोर एक्सक्विजिट फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव डेकोर, यूनिक गिफ्ट्स, डिलीशियस फूड एंड सो मच मोर, ऑल अंडर वन रूफ। Mark your calendars, 16th, 17th and 18th October 2026, Friday, Saturday or Sunday, Community Center, Sector 15, Faridabad में। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आइए और इस फेस्टिव सीजन को बनाइए ट्रूली स्पेशल। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली एग्जीबिशन। शॉप, सेलिब्रेट, इंस्पायर।

इस अक्टूबर फरीदाबाद में होने वाला है गरबा का ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रेजेंटिंग ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। 18th अक्टूबर को गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग नाइट ऑफ डीजे ढोल गरबा रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी सलों पार्टनर हेयर सर्कल यूनिसेक्स सलों नेक्स्ट टू हैमिल्टन टावर सेक्टर 34 बाय अंजू दुबे मेकअप ज्वेलरी पार्टनर मनीष ज्वेलर्स मेन मार्केट सराय ख्वाजा गेमिंग पार्टनर नेक्सस गेमिंग ऑर्थोफिजियो पार्टनर डाबरा ऑर्थोपेडिक सेंटर क्लोथिंग पार्टनर अन्वेषा डिजाइन। So, wear your best garba look. Bring your people and get ready to dance the night away. 18th October, Glorix Garba Night 2026. Be there, be festive, be Glorix.

खुश हो जाएगा आपसे। तो ये एक छोटी वाली खुशी। कई लोग मेंस होते हैं जिन्हें डीओ बहुत पसंद होता है, डीओ का अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो वो एक छोटी डीओ की बॉटल भी उनको ला के दे देंगे, नॉट सो एक्सपेंसिव। मैं एक्सपेंसिव डीओस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। शूज का कलेक्शन, ऐसे मेंस की बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बहुत सारे मेंस होते हैं जिन्हें अपने जूतों से बहुत प्यार होता है, तो उनकी जूते जो होते हैं ना उनसे अपना आप डिस्टेंस बना के रखिए। ये नहीं कि जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, भाई ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत हर्ट कई बार कर जाती हैं। तो अगर आपको पता है आपके मेन को क्या पसंद है, तो पहले तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक मेन के बारे में, तो जो उसे पसंद है उसकी उस चीज का अगर आप टेक केयर कर लोगे ना, तो मेन से बढ़िया इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी उस चीज की केयर कर लो जो उसे सबसे पसंद है, बस दैट्स इट। अगर उसे खाना पसंद है तो उसे अच्छा खिला दो, तो वो सबसे खुश रहने वाला। तो आपको अब फिगर आउट करना है आपका जो मेन है उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, और उसके लिए वही हर थोड़े थोड़े टाइम बात करते रहो, तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी लव लाइफ है वो बेटर चलती रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

देखो हम रेडियो महारानी वाले ना हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आपके लिए लाते रहते हैं जो शायद आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि आपको आज तो नहीं आज से 10 साल 15 साल बाद भी उसके असर दिखाई देंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और इस बार हम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। और इसमें हम कुछ बड़ा करने के लिए आपसे नहीं कह रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं आप ऑक्सीजन मास्टर बन जाइए। अब आप ऑक्सीजन मास्टर कैसे बनेंगे? सिंपल सा इसका एक प्रोसेस होने वाला है कि आप अपने आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर आप पेड़ लगा सकते हैं जो बड़ा होकर एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाए। और उसके लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए आपको करना क्या है, हमें मैसेज करना है, हमें डीएम करना है, रेडियो महारानी के नाम से हम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, वो भी ना मिले तो इट्स आरजे तुषार के नाम से मैं मिल जाऊंगा, वहां पर आगे डीएम करिए कि हम ये करना चाहते हैं। प्लांट हम आपको देंगे, पेड़ आप आके हमसे लेके जाइए, हमारे ऑफिस से कलेक्ट करके जाइए, उसको लगाइए और लगाने के बाद उसकी जो फोटो है वो हमको भेजिए और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप एक ऑक्सीजन मास्टर हैं, आपने ऑक्सीजन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो यार इतनी अच्छी चीज जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्लांट से ऑक्सीजन से इंट्रोड्यूस कर रही है, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी को रुकना चाहिए या अपने कदम रोकने चाहिए। लाइन लग जानी चाहिए मेरे ऑफिस के बाहर, इतने प्लांट आपको चाहिए हो कि हम देते देते थक जाएं, और हम सारे प्लांट देने की कोशिश करेंगे। बस आपको पहला कदम उठाना है, बाकी कदम तो हम उठा ही चुके हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: इस सोसाइटी में ना नारी बहुत सारे रोल जो है वो प्ले करती है, कभी एक वर्किंग वुमेन का, कभी एक टीचर का, कभी किसी के रोल मॉडल बनने का। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और एक ऐसी ही नारी आज मेरे साथ है जो हमारे लिए रोल मॉडल भी है, जो ऑथर भी है, जो टीचर भी है, और वर्किंग वुमेन तो ऑब्वियस सी बातें है ही, प्लस अपने घर को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। प्राची भारद्वाज आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। प्राची, पहले तो अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, एज अ टीचर जर्नी आप कैसे आए, या कोई और फ्यूचर में कोई लड़की अगर इस टीचिंग जर्नी में आना चाह रही है तो उससे अगर आप गाइड करना चाहें।
1: ओके, सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार टू ऑल माय ऑडियंस एंड थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू टू रेडियो महारानी मुझे आज बुलाने के लिए। इट्स अ ब्लेसिंग कि आप एक वर्किंग वुमन है, एंड मैं सारी गर्ल्स को जो भी आज मुझे रेडियो महारानी के प्लेटफॉर्म के थ्रू सुन रही हैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वर्क हार्ड, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई फील कि एक ब्लेसिंग है कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और उसके साथ एक टीचर हूँ। तो चैलेंजेस तो सर हर जगह है, नो डाउट, लाइफ विदाउट चैलेंजेस आई थिंक किसी के भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक एग्जांपल को लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी लाइफ में चैलेंजेस हो। तो बीइंग अ टीचर कुछ चैलेंजेस जो होते हैं, सबसे पहला कि बहुत टायरसम जॉब है, आपको हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ रहना है, ठीक है। आप टायर्ड हो, आप परेशान हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप जब क्लास में एंटर करेंगे, आप जब क्लास में पढ़ाएंगे, तो यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड आपके फेस पे वो स्माइल होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके। और चैलेंजेस तो मैं यही कहूँगी कि यही है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि हमें बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। वो अगेन कहीं आपको उनकी मदर बनना पड़ रहा है, कहीं आपको उनका फ्रेंड बनना पड़ता है, कभी आपको उनका एक आई वुड से काउंसलर बनना पड़ रहा है। तो ये आप एक टीचर होने के साथ साथ बहुत अलग रोल्स भी प्ले करेंगे, तो ये भी एक चैलेंज है कभी कभी कि आप एक सिर्फ टीचर नहीं है, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, रादर आप उनकी मामा भी बन रहे हैं, कभी आप उनके लिए फ्रेंड भी बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो आई वुड से अ चैलेंज, बट कहीं ना कहीं आई फील इट इज अ प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में आपको फिट होना आता है। सो दिस इज आई वुड से फ्यू चैलेंजेस जो मुझे लगता है कि एक टीचर को होंगे।
0: अब एक टीचर यहाँ पर है और उससे हम ये डिजिटल चेंज के बारे में नहीं जानेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो थोड़ी देर बाद हम लौट के वापस आते हैं और प्राची से ये डिजिटल दुनिया के चेंजेस के बारे में या डिजिटल दुनिया में चेंजेस आने की वजह से जो हमारे हर्डल्स आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: इस अक्टूबर फरीदाबाद में होने वाला है गरबा का ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रेजेंटिंग ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। 18th अक्टूबर को गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग नाइट ऑफ डीजे, ढोल, गरबा, डांडिया एंड नॉन स्टॉप फेस्टिव एनर्जी। ऑफिशियली प्रेजेंटेड बाय ग्लोरिक्स एंटरटेनमेंट एट रोजवुड ग्रैंड होटल सेक्टर 34 फरीदाबाद। टिकट पार्टनर ऑल इवेंट्स, सपोर्टिंग पार्टनर आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद एंड स्टूडियो वन डांस एंड फिटनेस, रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी, सलो पार्टनर हेयर सर्कल यूनिसेक्स सलो नेक्स्ट टू हैमिल्टन टावर सेक्टर 34 बाय अंजू दुबे मेकअप, ज्वेलरी पार्टनर मनीष ज्वेलर्स मेन मार्केट सराय ख्वाजा, गेमिंग पार्टनर नेक्सस गेमिंग, ऑर्थोफिजियो पार्टनर डाबरा ऑर्थोपेडिक सेंटर, क्लोथिंग पार्टनर अन्वेषा डिजाइंस। So, wear your best garba look, bring your people and get ready to dance the night away. 18th October, Glorix Garba Night 2026. Be there, be festive, be Glorix.
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन
1: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15th अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद 11 AM to 8 PM
2: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु बिगर बेटर बोल्डर।

0: तो हमारी जो आज की गेस्ट है ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये एक ऑथर भी है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और प्राची आप टीचर के साथ साथ एक ऑथर भी है। लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ये लिखने का शौक कहाँ से आ गया?
1: ओके सर, सो मैंने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है जो पब्लिश हुई, एंड दैट इज अनबॉदर्ड। तो ये एक शिफ्ट था जो कि मेरे को लगा कि अब मैंने टेंसेस बहुत पढ़ा लिए हैं, जिससे बच्चों की मैंने टेंसेस बहुत सिखा दिए, बट अब मुझे ऐसा कुछ लिखना है जो एक्चुअल में उनकी लाइफ रिफ्रेम कर सके। सो मैंने एक बुक लिखी अनबॉदर्ड, और जैसे कि टाइटल ही खुद कह रहा है कि यू हैव टू लीव ऑल द नेगेटिव एनर्जी, तो ये नो डाउट बच्चों के लिए, बट आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन देयर टीन्स एंड फॉर पीपल लाइक अस दोज हु आर इन देयर थर्टीज। ये बुक ये थी जब मैंने देखा कि आजकल बच्चा बहुत परेशान है उन कमेंट्स से जो कि उनके फ्रेंड्स उनको पास ऑन कर रहे हैं, हम एज अ वर्कर्स परेशान है उन कमेंट्स से जो कि एक्चुअल में कोई यूज के नहीं है। तो अनबॉदर्ड इज अ बुक जो कि आपको ये बताता है कि लाइफ में बहुत लोग कमेंट करेंगे, बट आपको कैसे अनबॉदर्ड रहना है, आपको अपनी लाइफ पे कैसे फोकस करना है, दिस इज समथिंग जो मैंने इस बुक में लिखा। तो ये एक नो डाउट शिफ्ट था रेड पेन से एक राइटिंग पेन के टुवर्ड्स जो मैंने किया, एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस जो कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ लिखूं। एंड ये सब टॉपिक्स मुझे बच्चों से ही आए कि जो मैं उनको देख रही हूँ आजकल, वो पीयर प्रेशर में है, आजकल वो डिप्रेशन में है, वो आजकल अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। एंड नॉट ओनली बच्चे, अगर मैं बात करूँ हमारी एज अ यंग जनरेशन, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है, हम लोग कंपैरिजन में है, हम लोग उन सारे चीज़ों से बाउंडेड है जो कि एक्चुअल में किसी भी वर्थ की नहीं है, बट वो हम लोग इतना ज़्यादा उन चीज़ों को मैटर कर रहे हैं कि वो हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है अनबॉदर्ड, एंड अब वो सारे ही आपके अमेजोन एंड आपके सारे यू कैन से प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। सो यस, दिस वॉज अ शिफ्ट, एंड नो डाउट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा क्लासरूम्स का, उसी ने मुझे मोटिवेट किया। क्लासरूम एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस आई वुड रादर से, कि जिसने मुझे मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए, एंड या द बुक इज डूइंग गुड।
0: ऑल द वेरी बेस्ट आपकी ये बुक के लिए जो अभी आई है। आई होप बहुत सारे लोग उसे रीड करें, बहुत सारे लोग इस पे रिव्यू दें, बहुत सारे लोग इस पे फीडबैक दें, और आप आगे ऐसे भी और बुक्स जो हैं वो लिखती रहें। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन्हें एक टीचर की लाइफ से रिलेटेड, एक स्कूल की लाइफ से रिलेटेड फिर से वो सारा रिकैप देने के लिए। एंड कीप लिसनिंग टू 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूँ। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है, या किसी का खून बहुत ज्यादा है, या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना, या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना, या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर।

0: देखो हम बच्चे हैं और हमारे पास सबसे बड़ा टूल होता है एक्सक्यूज देना जब भी हमसे कोई काम टीचर सामने से बोल दे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा यही आने वाला है, कोई ऐसा क्लास का इंसिडेंट जहाँ पर आपने होमवर्क दिया और बच्चे ने नहीं किया और एक्सक्यूज सुन के आपको लगा यार ये क्या फनी बात कर रहा है, ये क्या बिल्कुल ऐसी इलॉजिकल बात कर रहा है।
1: होमवर्क तो सर नो डाउट बहुत बच्चे नहीं करके आते हैं एंड

0: बस आई वुड से कॉमन एक्सक्यूजेस यही रहते हैं, कॉपी भूल गया, कर रहा था टेबल पे कॉपी रह गई. और एक एक्सक्यूज जो मुझे अभी फिलहाल याद आ रहा है वो ये था कि मैम मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई है, मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई. तो आई वॉज लाइक ओके, बट वो एक नोटोरियस बच्चा था लाइक, तो मुझे था कि एक बार क्रॉस चेक करती हूँ कि लेट मी कॉल द पेरेंट एंड आस्क कि ऐसे घर पे कुछ मिस हैपनिंग हुई है. एंड जो उन्होंने कहा था कि ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, लकीली वो या आई वुड से इट वॉज अ नॉट गुड थिंग फॉर हिम, वो ग्रैंड फादर ने फोन उठा लिया. एंड आई वॉज लाइक कि सर कुछ मिस हैपनिंग हुई है घर पे. तो उन्होंने कहा कि किसकी मैम? मैंने कहा कह रहे हैं कि बाबा की डेथ हो गई है. कह रहे मैं तो बाबा ही बोल रहा हूँ. तो बच्चा देखिए बच्चा है फिर से ना, तो वो कुछ भी कर सकता है. तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बच्चे बहुत आई वुड से कभी कभी फनी एक्सक्यूजेस देते हैं. और एक टीचर को पता होता है सर कि कब एक्सक्यूज है कब जेन्युइन रीजन है.
1: अच्छा अगला एक सवाल मैं इसी में पूछना चाहूंगा आपको, अगर हम एक दिन के लिए वापस स्टूडेंट बना रहे हो तो आप अपनी कौन सी टीचर के पास वापस जाना चाहोगे या कौन सा सब्जेक्ट वो है जिसे अटेंड करना चाहोगे?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि वहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे. बट हाँ, अगर किसी टीचर की क्लास मैं दोबारा से लाइक अटेंड करना चाहूँ तो वो अगेन मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे लगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहूंगी, तो वो मेरी इंग्लिश क्लास ही रहेगी. एंड टीचर लाइक टीचर का मैं नाम लूँ तो मेरे सारे इंग्लिश टीचर्स, जैसे चलो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने इंग्लिश टीचर्स को भी एक आई वुड से सल्यूट या फिर उनको भी एक रिकॉग्नेंस देना चाहूँगी. जैसे जगदीश सर थे हमारे इंग्लिश के, हमारे अशोक सर थे, निशा मैम थी, तो सारे टीचर्स थे, सबकी मैं क्लासेस दोबारा अटेंड करना चाहूँगी. एंड वो सारे जैसे वो पढ़ाते थे, कहीं ना कहीं आज मैं उस चीज़ को कॉपी कर रही हूँ क्योंकि सीखा वहीं से ही है, जो जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाया है उसी में ही कुछ आई वुड से एडवांसमेंट करके आज मैं पढ़ा रही हूँ. तो आई थिंक इंग्लिश क्लासेस एंड अपने सारे इंग्लिश टीचर्स, नो नॉट अ स्पेसिफिक वन, बट हाँ तो याद भी नहीं है आई वुड से सबका नाम, बट हाँ जी इंग्लिश टीचर्स मेरे जो थे उनकी क्लासेस मैं दोबारा अटेंड करना ज़रूर चाहूँगी कभी लाइफ में मौका मिला तो.
1: तो ये है प्राची भारद्वाज जो खुद एक टीचर हैं और इन्हीं से हम टीचिंग की जर्नी, स्टूडेंट्स की जर्नी और ओवरऑल एक एज अ टीचर क्या फील होता है उसका समझ जानने की कोशिश कर रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके.

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो ये मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: नवरात्र सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ कुष्मांडा को क्रिएशन और पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में भी हमारा एनवायरनमेंट और हमारे थॉट्स हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन नेगेटिविटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम के बीच फंसा हुआ है तो वो अपने आसपास और अपने माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से करे?
1: कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसका बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपके विचार ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हैं तो बाहर से उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने भीतर के स्पेस को शुद्ध कीजिए। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। दिन की शुरुआत में कुछ देर मौन बैठना, उन चीजों को, उन लोगों को कृतज्ञ भाव से देखना जो आपके पास है, और अपने विचारों को नई दिशा देना। जब आपका भीतर का आकाश साफ हो जाएगा तो बाहर का अंधकार अपने आप छटने लगेगा।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक्के।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा, आपको भी ठंड लग रही है क्या? क्योंकि बारिश की वजह से अक्टूबर में अब धीरे धीरे ब्लैंकेट सीजन की एंट्री होने वाली है भाई। और इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी बॉलीवुड गॉसिप हो जाए तो क्या ही बात है। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। और अगले 2 घंटे होंगी बॉलीवुड की बातें, इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ढेर सारा म्यूजिक। तो चाय हो या कॉफी, अपना मूड सेट करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

0: दिवाली अपनी खुशियों में जोड़िए शॉपिंग का चार्म, फैशन का ग्लैमर और सेलिब्रेशन का म्यूजिक। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। एक्सप्लोर एक्सक्विजिट फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव डेकोर, यूनिक गिफ्ट्स, डिलीशियस फूड एंड सो मच मोर, ऑल अंडर वन रूफ। Mark your calendars, 16th, 17th and 18th October 2026, Friday, Saturday or Sunday, Community Center, Sector 15, Faridabad में। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आइए और इस फेस्टिव सीजन को बनाइए ट्रूली स्पेशल। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली एग्जीबिशन। शॉप, सेलिब्रेट, इंस्पायर। Get ready Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Clorox Entertainment present Clorox Garba Night, 17 October, शाम 6 बजे से।
0: Venue partner Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner Radio Maharani 89.6 FM.
1: Supporting partners Art of Living Faridabad, Studio One Dance and Fitness.
0: Right partner Vogue, Women Occupied Cars. Sport partner Not Out. Health partner Ajurveda. Security partner Big Panther.
1: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
2: चमा चमा नाच आजे, धमा दम ढोल बाजे, non-stop हल्ला मचेगा.
1: Tickets available हैं all events के site पे, या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, डीजे की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कहते हैं ना, किसी को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जब एक औरत कुछ करने की ठान लेती है ना, तो बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों भाई? और आज नवरात्रि के पांचवे दिन माँ स्कंद माता के आशीर्वाद और शक्ति को याद करते हुए बात करते हैं एक ऐसी ही फियरलेस वुमेन की, जिसने पर्दे पर अपनी हिम्मत से सबका दिल जीत लिया। मैं बात कर रही हूँ 2014 में आई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी की। इस फिल्म में रानी ने शिवानी शिवाजी रॉय नाम की एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया, जो एक लापता लड़की को ढूंढते ढूंढते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खतरनाक रैकेट तक पहुँच जाती है। अपने मिशन में वो किसी से नहीं डरती और गलत का सामना पूरी हिम्मत से करती हैं। रानी जी की जबरदस्त एक्टिंग और उनका पावरफुल अंदाज इस फिल्म को खास बनाता है, और फिल्म का मैसेज भी क्लियर है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत किसी भी इंसान में हो सकती है। तो आज के दिन मर्दानी की याद के साथ सैल्यूट उन सभी औरतों को जो मुश्किलों के सामने हार नहीं मानती। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, हॉरर मूवीज देखते वक्त सबसे ज्यादा हिम्मत तब चाहिए होती है जब स्क्रीन पर कुछ दिख भी नहीं रहा होता, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक से ही लगने लगता है कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और अब बॉलीवुड में हॉरर लवर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहा है कि कृति सैनन एक बार फिर मैजॉक फिल्म्स के साथ हॉरर फिल्म में नजर आ सकती हैं। भेड़िया के बाद कृति का एक नया प्रोजेक्ट रिपोर्टेडली एक प्रॉपर हॉरर फिल्म होगा, यानी इस बार स्त्री और मुंजिया की तरह कॉमेडी के साथ डराने के बजाय मेकर्स का फोकस सिर्फ हॉरर पर रह सकता है। कृति के लिए ये प्रोजेक्ट खास इसलिए भी है क्योंकि मिमी में उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था और उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। हालांकि अभी फिल्म की स्टोरी, डायरेक्टर और बाकी कास्ट को लेकर ऑफिशियली डिटेल सामने नहीं आई है, तो फिलहाल सवाल बस इतना है कि कृति की ये फिल्म हमें सच में डराएगी या फिर हॉरर के नाम पर सस्पेंस ही सस्पेंस मिलेगा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक, आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

फरीदाबाद तैयार हो जाओ, क्योंकि इस अक्टूबर डांडिया की रात होगी और भी धमाकेदार। बॉलीवुड का तड़का, ढोल की थाप और मस्ती बेशुमार। ढोल डांडिया 2026, जहां मिलेगा ट्रेडिशन का सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट का एक्सप्लोजन और आपके फेवरेट स्टार से मिलने का गोल्डन चांस। जी हां, मिलने आ रहे हैं तुम मेरे हो की स्टार कास्ट गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया। साथ ही मिलने का मौका सोहित विजय सोनी से, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं बल्कि तेनाली रामा भाभी जी घर पर हैं, जैसे शो से अपनी पहचान बना चुके हैं। और एंटरटेनमेंट का डोज अभी खत्म नहीं हुआ, खुशी बालियान के स्पेशल अपीयरेंस के साथ एंजॉय करिए एक्साइटिंग गेम्स, लकी ड्रॉ, डिलीशियस फूड और शॉपिंग स्टॉल्स। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ले आइए और डांडिया की बीट्स पर मचाइए फुल ऑन धमाल 17 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से रॉयल कासा लाउंज फरीदाबाद, प्रेजेंटेड बाय सार्की विंस और व्यापार कारोबार टॉक्स। वेन्यू पार्टनर रॉयल कासा लॉन, पावर्ड बाय सीदास ग्रुप और रेडियो महारानी। गोल्ड स्पॉन्सर द गोल्डन मिनट हॉस्पिटल, मीडिया पार्टनर पहचान फरीदाबाद। और याद रखिएगा, ढोल डांडिया 2026, जहां ढोल बजेगा और फरीदाबाद झूमेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कभी कभी किसी फिल्म का असर सिर्फ थिएटर से बाहर आने तक नहीं रहता, बल्कि वो आपको रियल लाइफ में भी कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर देती है। और इसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल है रश्मिका मंधाना। रश्मिका जल्द ही विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म रणबाली में नजर आने वाली हैं, जिसमें वो जय अम्मा का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किरदार से इंस्पायर होकर रश्मिका ने रियल लाइफ में भी एक अच्छी इनिशिएटिव ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 400 फैमिलीज की जिम्मेदारी उठाई है और रश्मिका इन परिवारों की 3 महीने तक मदद करना चाहती हैं और आगे 1 साल तक इस सपोर्ट को जारी रखने का इरादा भी रखती हैं, ताकि उनका ग्रोसरी बजट बच सके और वो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर पाए। रश्मिका का कहना है कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा कुछ बहुत बड़ा करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक छोटी सी काइंडनेस भी किसी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ला सकती है। और उनकी फिल्म रणबाली 16 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी कि कल। तो भाई, ये तो हुई रियल लाइफ से रियल लाइफ तक पहुंची एक अच्छी कहानी, और सच में ऐसे जेस्टर्स दिल जीत लेते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके पर।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कुछ गाने ना दिल को इतने करीब लगते हैं कि उन्हें सुनते ही किसी की याद आ जाती है, और फिर हम चाहे कितने भी बिजी हों, कुछ पल के लिए बस उसी गाने में खो जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है तुम ही आना, जो 2019 में आई फिल्म मरजावा का हिस्सा था। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गाना सुनते ही दिल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया पर फिल्माया गया ये सॉन्ग फिल्म के एक दर्द भरे मोमेंट को और भी गहरा बना देता है। लेकिन इस गाने के पीछे एक और इमोशनल बात है। इसके लिरिक्स कुणाल वर्मा ने लिखे थे और उन्होंने खुद बताया था कि गाना लिखते वक्त वो भी इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। और म्यूजिक पायल देव ने दिया, और आज भी ये गाना हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। यूट्यूब पर भी इस गाने को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। और सच में भाई, कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। और अब वक्त भी गाने का हो चुका है। एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

0: रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए। एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से। और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है। के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है। बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285। एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
1: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर रेडिसन ब्लू फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, बॉलीवुड में जब दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में एक ही टाइम पर रिलीज होने वाली हों, तो फैंस के बीच एक्साइटमेंट के साथ कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। और अब ऐसी ही चर्चा हो रही है प्रभास की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट और सलमान की मॉन्स्टर को लेकर। प्रभास पहली बार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम कर रहे हैं और फिल्म में प्रभास एक फिल्म ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे और उनके साथ तृप्ति डिमरी, विवेक ओबरॉय और प्रकाश राज भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। पहले स्पिरिट की रिलीज डेट 5 मार्च 2027 बताई गई थी, जबकि सलमान की मॉन्स्टर 10 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि स्पिरिट की रिलीज आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से रिलीज डेट पोस्टपोन होने की ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है, तो फिलहाल फैंस को इंतजार करना होगा कि दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर सामना होता है या रिलीज डेट्स अलग हो जाती हैं। अब आप बताइए मुझे कि आपको प्रभास की स्पिरिट का इंतजार है या सलमान की मॉन्स्टर का। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेस होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस

इस अक्टूबर फरीदाबाद में होने वाला है गरबा का ग्रैंड सेलिब्रेशन प्रेजेंटिंग ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026। 18th अक्टूबर को गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग नाइट ऑफ डीजे, ढोल, गरबा, डांडिया एंड नॉन स्टॉप फेस्टिव एनर्जी। ऑफिशियली प्रेजेंटेड बाय ग्लोरिक्स एंटरटेनमेंट एट रोजवुड ग्रैंड होटल सेक्टर 34 फरीदाबाद। टिकट पार्टनर ऑल इवेंट्स, सपोर्टिंग पार्टनर आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद एंड स्टूडियो वन डांस एंड फिटनेस, रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी, सलों पार्टनर हेयर सर्कल यूनिसेक्स सलों नेक्स्ट टू हैमिल्टन टावर सेक्टर 34 बाय अंजू दुबे मेकअप, ज्वेलरी पार्टनर मनीष ज्वेलर्स मेन मार्केट सराय ख्वाजा, गेमिंग पार्टनर नेक्सस गेमिंग, ऑर्थो फिजियो पार्टनर डाबरा ऑर्थोपेडिक सेंटर, क्लोथिंग पार्टनर अन्वेषा डिजाइंस। So, wear your best garba look, bring your people and get ready to dance the night away. 18th October, Glorix Garba Night 2026. Be there, be festive, be Glorix.

के बीच की लाइन इतनी थिन होती है कि पता ही नहीं चलता कि सामने वाला प्यार कर रहा है या बस पॉसेसिव होता जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन को लेकर आ रही है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर तू है मेरी किरण, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है। और ट्रेलर में सोनाक्षी है किरण और जहीर है समर, और समर को लगता है कि किरण के साथ उसका एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, लेकिन किरण क्लियरली उसे डिस्टेंस चाहती है, इतना कि फोन ना करने तक को कहती है। लेकिन समर पीछे हटने वाला नहीं है भाई, और यहीं से स्टोरी थोड़ी अनसेटलिंग होने लगती है। कभी जो हो रहा होता है वो रियल लगता है, कभी लगता है कि शायद किरण की रियलिटी ही उसे कंफ्यूज कर रही है। और जैसे जैसे समर का बिहेवियर पॉसेसिव होता जाता है, सस्पेंस भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। मतलब ट्रेलर देख के एक सवाल तो दिमाग में रह ही जाएगा कि जो हम देख रहे हैं ना, क्या वो सच में हो रहा है। और ये फिल्म आपको 23rd of October 2026 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि ये फिल्म कितनी मिस्टीरियस होने वाली है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर्स।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: तो दोस्तों, आज के फिल्मी गपशप में कभी सस्पेंस मिला, कभी इमोशनल गाने और कभी बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी अपडेट। मैं हूं पलक और अब आज के फिल्मी फ्लेवर को शट डाउन करने का वक्त आ गया है। कल फिर मिलूंगी आपसे नई फिल्मी बातों और नए गानों के साथ। तब तक सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के, 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य माँ स्कंद माता मदरहुड और नर्चरिंग का सिंबल है, लेकिन जो इंसान सबकी केयर करते हैं वो अक्सर खुद की केयर को लास्ट प्रायोरिटी बना देते हैं, स्पेशली वुमेन के केस में। तो क्या अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिशनेस है या एक्चुअली फैमिली को बेटर केयर देने के लिए सेल्फ केयर जरूरी है?
1: यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों के लिए। समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि सबका ध्यान रखना ही त्याग है और खुद को भूल जाना ही महानता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मंदिर का मुख्य दिया ही बुझ जाए तो वह अपने पूरे प्रांगण को रोशन कैसे करेगा? अपने लिए समय निकालना, अपनी मानसिकता के लिए समय निकालना और अपनी शारीरिक ऊर्जा को हील करने के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है, यह तो एक जरूरत है ताकि आप दूसरों को बेहतर, स्वस्थ और सच्ची ऊर्जा दे सके। जब आप खुद से ही प्यार करते हैं तो आपकी केयर में एक अलग ही पवित्रता और गहराई आ जाती है।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 69.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।

0: कोई भरोसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ओ जी डोला तो नहीं आया, मगर एक चीज है जो कि आ गई और इसकी नीड भी नहीं थी, और उसे कहते हैं बारिश। हाँ, बारिश आ गई है और इसने कर दिया है मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल। पाउडर की ऐड आती थी ना ऐसे करके। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। कैसे हैं आप सब? मौसम कितना प्यारा हो गया ना। नहीं, एक बार सोचो जरा इसके बारे में। सोचा था आप लोगों ने कि आज बारिश होगी, मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी बारिश होगी आज, बट हो गई। और फिर उसके बाद वीकेंड भी नज़दीक आ चुका है, और बता दूं आप सभी को ये वाला वीकेंड थोड़ा सा लंबा वाला वीकेंड होने वाला है। अच्छा, खैर वापस बारिश पे आते हैं। सुबह सुबह धूप आ रखी थी, बहुत प्यारी धूप थी, एंड उस धूप को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार अब पता नहीं कभी बारिश देखने को हमें मिलेगी। फिर मेरा दोस्त जो पहाड़ों पर गया हुआ है वो बर्फ़ की फ़ोटो भेज रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार चलो कोई तो एंजॉय कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो फिर अचानक से 10:30 बजे के करीब बादल आए, फिर 11 बजे के करीब छींटे पड़े, फिर बारिश शुरू हो गई, और फिर उसके बाद तब से लेके अभी शाम तक बारिश की छींटे कहीं ना कहीं पड़ ही रहे हैं। बट आप सभी को बता दूँ ये सिर्फ आज के लिए है, और किसी किसी के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया होगा कि ये कल भी हो सकती है, बट कल होगी नहीं होगी इसकी बात तो कल ही कर लेंगे ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अगले 4 घंटों के लिए मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, आई डोंट नो वाई, नींद पूरी नहीं हुई होगी। कल रात को मैं सोया था करीब 1:30 बजे और सुबह उठ गया मैं 6:30 बजे, तो मतलब वही 6 घंटे 5 घंटे की नींद मेरी पूरी हुई है 24 घंटे में से। तो ऐसा आप लोग भी कर रहे होंगे, पापी पेट का सवाल है कि नहीं। रात को मतलब लेट तक जागो, फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाओ, तो ऐसा ही होता है, नींद आती है फिर पूरे दिन। तो आप लोगों को भी आ रही होगी, तो अब ज़्यादा नींद नहीं आने वाली क्योंकि गाने अच्छे से चलाने वाला हूँ। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को, गौरव है मेरा नाम, बातें चलते रहेंगे, और इसी बीच मुझसे बातें करनी है तो नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

इस गाने की ट्यून पे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा और वो यही है कि अपनी गाड़ी को अंडरपास के पास से मत ले जाइएगा, नहीं तो मित दारोणा पैजूगा। आरजे गौरव है आप सभी के साथ। दो बूंद की बारिश होती है और फिर उसके बाद पानी भर जाता है, जल भराव होता है, और आज दो बूंद की बारिश तो नहीं हुई है, मैं ये बोलूंगा बारिश तो अच्छी हुई है। देखो जितनी मॉनसून में एक्सपेक्टेड थी उतनी बारिश नहीं हुई, फिर उसके बाद मुझे लगा था साल की आखिरी बारिश या फिर मॉनसून की आखिरी बारिश सेप्टेम्बर ये जो 22-23 के आसपास पड़ी थी, मुझे लग रहा था इसके बाद एक भी बूंद नहीं पड़ने वाली, बट थैंक्स टू गॉड अब हो गई बारिश। इसका मेन रीज़न है जो पहाड़ी एरिया है, यानी कि जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल इस साइड बर्फबारी हुई है, उत्तराखंड में भी काफ़ी सारी जगह जहां पर बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से फरीदाबाद में इस टाइम बारिश आपको देखने को मिली। और फरीदाबाद में जब बारिश देखने को मिलती है तो एक चीज़ तो कॉमन है और वो चीज़ उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो है अंडरपास फुल हो जाता है, और अंडरपास फुल होते ही उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रोड क्लोज कर दी गई थी आज दिन में ही, और फिर उसके बाद अंटिल फर्दर नोटिस कह सकते हो आप कि अंटिल फर्दर नोटिस रोड बंद कर दिया गया था ओल्ड का अंडरपास। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेवला महाराजपुर अंडरपास की तो वो फिर भी बहुत स्मूथली चलता है, और इसके अलावा मेन रोड पर अगर हल्का सा भी पानी जमा हो जाए तो लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके खड़े हो जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ जो टू व्हीलर चलाते हैं। देखो मैं मानता हूँ आज कोई बारिश का अनुमान नहीं था, बट बारिश जब आती है ना ये लोग क्या करते हैं, जो फुट ओवर ब्रिज है उसके नीचे बाइक लगा के खड़े हो जाते हैं। अब ठीक है आप लोग बारिश में भीगने से बच रहे हैं, बट आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, आप बाइक साइड में लगा के उसके नीचे जाके खड़े हो सकते हैं, बट नहीं ये लोग साइड बाय साइड गाड़ियाँ लगा लेते हैं, अपनी बाइक लगा लेते ताकि पीछे से आने

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: गाइज यू नो वॉट, अब आपके फोन पे एक घंटी बजेगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन है जो हमें फोन कर रहा है। क्या वो इंसान है या फिर वो रोबोट है जो हमको फोन कर रहा है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, और इसको लागू करने के लिए कह दिया है सरकार ने 1 नवंबर से। और इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमें कौन कॉल कर रहा है, और आजकल तो आप सभी को पता होगा कि फ़ोन नंबर से ही नाम लिखा हुआ आ जाता है कि कौन इंसान हमें कॉल कर रहा है, तो अब ऐसा ही होगा कि 1 नवंबर 2026 से सभी फ़ोन पर कॉल आने पर कॉलर के फ़ोन नंबर के साथ साथ उसका सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज उसका नाम दिखाना होगा। मतलब कि जैसे मान लेते हैं आपने जब नंबर खरीदा था ना, तो आपके नाम पे वो खरीदा गया था नंबर, यानी कि मेरा नाम गौरव है तो मेरे नाम पे खरीदा गया था वो नंबर। अब कल को मेरे नंबर से कोई किसी और को कॉल करे तो वो उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा कि गौरव कॉलिंग। अब ये चीज़ लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है सरकार ने 1 नवंबर 2026 से सबके फ़ोन में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और ये सर्विस अभी सिर्फ 4G और 5G नेटवर्क के सभी यूज़र्स के लिए खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी, जबकि 2G 3G नेटवर्क अगर कोई यूज़ करता है तो उनके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। बट नो वरीज, आजकल तो सबके पास ही 4G और 5G नेटवर्क है, और जिनके पास नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास थर्ड पार्टी ऐप्स है, बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेफ नहीं होता हमारे फ़ोन के लिए। खैर, इसके अलावा इसमें मुझे लगता है एक चीज़ का फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि स्कैम कॉल्स कम हो जाएगी, क्योंकि पता लग जाएगा ना कि किसका फ़ोन आ रहा है। नंबर तो नहीं छुपा पाएंगे ना, बट ठीक है, स्कैमर्स जो होते हैं ना वो यहीं पर दिमाग लगाते हैं, पता नहीं कैसा दिमाग चलता है उन लोगों का। अच्छी जगह लगा लो, पैसा अच्छा कमा लोगे, बट नहीं, हमें तो स्कैम करना है। चलिए, इन सब के बारे में बातें और भी उतरेंगी, और भी अपडेट्स लेकर आता रहूंगा, मगर अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ।

गाइज यू नो वॉट, लंबा वाला वीकेंड इज हेयर, मतलब ऑलमोस्ट हेयर। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे को आपको छुट्टी लेनी है। अगर छुट्टी नहीं होती तो 17 को छुट्टी ले लोगे, 18 को संडे छुट्टी है, और फिर उसके बाद 19 तारीख को रामनवमी की बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, जिनकी नहीं है वो ले लेना। फिर उसके बाद दशहरा की छुट्टी है 20 तारीख की, तो मतलब आपके पास 4 दिन की छुट्टियां हैं और आप निकल सकते हैं किसी बढ़िया सी डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए। और वैसे भी पहाड़ों पर तो अभी बर्फबारी शुरू हो चुकी है ना दोस्त। कैसे आप सब, मैं ये पूछना भूल गया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कैसे हो आप सब? गाड़ी चला रहे हो तो इस चीज़ पर ध्यान देना कि लाइफ एक बार मिलती है, कल को फिर परेशान रहोगे, यहाँ नहीं जा पाया, वहाँ नहीं जा पाया, टाइम था, लॉन्ग वाला वीकेंड था, बट ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई दोस्त चलने को तैयार नहीं है ना, तो अकेले निकल जाओ, मेरी बात मानो, अकेले निकल के देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो आपको जगाए रख रही है। और ये सोलो ट्रैवल ना बड़ा ही एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस होता है, लाइक आप अपनी मर्जी से जहाँ मन कर रहा है आपका वहाँ रुक रहे हो, आप किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं हो और ना ही किसी के एसेट हो, लाइक आपका जब मन करा तब रुक गए, जब मन करा तब चल दिए, जहाँ मन किया वहाँ चले गए, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं है, जो मन किया वो खा लिया, ये होती है सोलो ट्रैवल। तो एक बार करके देखो, मज़ा आएगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर गाने सुनते रहिए, मज़ा तो आता ही रहेगा। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ गौरव, आपके साथ बातें और गाने यही चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

लोकल ट्रेन में आप लोगों ने क्या देखा है आज तक? मुझे अच्छे से याद है जब मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ या कभी भी चले जाता हूँ लोकल ट्रेन में, EMU जैसे कहते हैं, तो मैं एक चीज तो बहुत अच्छे से नोटिस करता हूँ, जैसी ट्रेन आती है ना वैसी आवाज आती है, टक टक टक टक टक टक, वो घंटी बजाने की आवाज बहुत ज्यादा आती है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। वो चिमटे से होते हैं ना जिन्हें बजाते हैं आपस में, बहुत बढ़िया सी आवाज आती है और भजन गाते हैं, भजन कीर्तन करते हुए आती है पूरी EMU, बड़ा अमेजिंग सा एक वाइब आती है इसके साथ। बट मैं ये सोच रहा था कि मान लो ऐसी ही चीज अगर मेट्रो में होने लग जाए तो, और अगर मैं बोलूं लोकल ट्रेन के अंदर अगर कोई गरबा खेलने लग जाए तो क्या होगा, विश्वास करोगे मेरी बातों पे? स्वागत है आप सभी का, रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। और जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये 100% सच है। हुआ क्या है, कहां पर हुआ है, सब कुछ बताता हूं। देखो, मुंबई की लोकल ट्रेन में लेडीज खेल रही थी गरबा। अब देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है गरबा और डांडिया, जिसका भी सीजन चल रहा है। हर जगह गरबा और डांडिया इवेंट्स हो रहे हैं। कल भी तो था, कितना रोड जाम हो गई थी ना नीलम के पास, मेरे पास किसी का कॉल आया था, उन्होंने बताया था कि मतलब ऑलमोस्ट मैं निकलने का वक्त था, 9 बजे के करीब उनका फ़ोन आता है, मैंने सोचा यार अभी क्या बताऊं। तो गरबा और डांडिया का सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है कि गरबा हाथों से खेला जाता है, डांडिया में डंडिया इस्तेमाल होता है, मतलब वो स्टिक्स का इस्तेमाल होता है। अब वापस आते हैं मुद्दे पे कि मुंबई की लोकल ट्रेन में लेडीज महिलाएं कुछ कर रही थी क्या, गरबा खेल रही हैं लोकल ट्रेन के अंदर, पूरा सर्कल बना के गरबा खेल रही हैं। और पूरा मेरे को ऐसा लगा वो तैयार होके ही गई थी गरबा खेलने के लिए, और शायद जाने में लेट हो गई, या फिर बोल सकते हैं कि उनका वहीं गरबा निकलना शुरू हो गया कि हाँ चलो अभी ही करना शुरू कर देते हैं, और उन्होंने गरबा करके दिखाया। और मतलब वीडियो तो वायरल हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, ट्रेन के अंदर क्यों कर रहे हैं, इट इज़ नॉट सेफ। इट्स नॉट सेफ बट ठीक है, कभी कभार तो चलता है ना, मतलब हमेशा थोड़ी ना कर रहे हैं। और इससे मैंने जो वीडियो देखा, कोई और यात्री परेशान नहीं हो रहा था, एवरीवन वाज लाइक रिकॉर्डिंग देम, तो इट्स गुड। अगर कोई परेशान नहीं हो रहा तब तक ठीक है, बट अगर कोई परेशान हो रहा है तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। इस पर सबकी अपनी अपनी डिफरेंट राय हो सकती है, तो उनकी राय को जरा साइड में रखते हैं और रेडियो महारानी पर गाना चलाते हैं आप लोगों के लिए। सिद्धू मूसेवाला, आतिफ असलम, दिलजीत दोसांझ, जिन सबकी AI कवर गाना है, सुनिए गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जहां पर आपके बॉस या फिर आपसे जो सीनियर है वो आपको बोल रहे हैं बेटा कल से आने की जरूरत नहीं है, या फिर ये बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी अब आपके हाथ से जा चुकी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ। और सपने में काफी बार हमारी नौकरी चली जाती है, और उसके मतलब क्या होता है, उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है कि नौकरी छूटना या फिर आप उसको निकाल दिया गया है। तो इसका सिंपल सा एक संकेत है, देखो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आने वाला है या फिर कोई परेशानी आने वाली है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको मिल सकता है, थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, बट भगवान न करे ऐसा कभी हो। दूसरी चीज़, इसमें ना पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन ये है कि ऐसा सपना इस बात की ओर एक इशारा करता है कि आप अपनी जो प्रेजेंट आपकी कंडीशन है ना, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और आप चाहते हो कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए। तो रियलिटी में भी शायद ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी बार ना साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, जैसे कि आपके मन में तनाव है, आप स्ट्रेस में हो और आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जिसमें आपको नौकरी जाते हुए दिख रही है, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब आज छूट चुकी है, आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया है। और हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, क्योंकि ऐसे सपने ये दिखाता है कि हमारे अंदर घबराहट है, खुद को लेकर इनसिक्योर हैं हम लोग, या फिर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो अपने सपने शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। नंबर है मेरा 9654896896। आप सुन रहे रेडियो महारानी, मैं हूँ गौरव।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

रेडियो का गौरव तो है आप सभी के साथ, बट कल 500 रन नहीं बन पाए, बस इसी चीज का अफसोस है। 500 रन किस लिए? 247 तो बना दिए थे, वेस्ट इंडीज ने 248 का टारगेट दे दिया था, और यहाँ इंडिया टीम 223 पर सिमट गई, ऑल आउट हो गई। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, अभी 2-2 से ही तो टाई हुआ है मैच, आगे अभी लड़ाई है, यही तो, ये तो बस अंगड़ाई है। कल का मैच अमेजिंग था, देखा आप लोगों ने? मैं देख रहा था मैच को, स्टार्टिंग ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी अगर मैं बोलूँ तो, मतलब 60 रन तक एक भी विकेट नहीं गिरी, एंड आई वाज लाइक 4 ओवर हुए हैं 60 रन बन गए, ऐसे तो बहुत जल्दी रन बन जाएंगे, बट वहीं मेरी नज़र लग गई, संजू सैमसन साहब की विकेट गिर गई। भाई ये लड़का बहुत अच्छा खेल रहा था, 23 बॉलों में 56 रन बनाए थे। देखो 4 ओवर में 24 बॉलें होती हैं, 24 में से इस लड़के ने 22 बॉलें खेली थी, और फिर उसके बाद चौथे पांचवे ओवर की पहली बॉल, मतलब 4.1 पे ही आउट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 23 बॉल खेल के 56 रन बनाए, 4 छक्के 6 चौके, और बहुत ही गजब बैटिंग करके दिखाई इस लड़के ने। बट यहाँ पर हमें जीतना था, आउट नहीं होना था, और जब आउट होने की बारी आई तो फिर ईशान किशन बैटिंग पर आए और चले गए, मतलब 67 पे दूसरी गिरी, 97 पे तीसरी विकेट गिरी, फिर उसके बाद 130 पर अभिषेक शर्मा आउट हुए। बट मेरे को

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कल टीम इंडिया के दो खिलाड़ी जीरो पर आउट हुए हैं, उनमें से एक हैं यादव साहब, प्रिंस यादव साहब, और दूसरे हैं नमन धीर साहब। भाई ये दोनों से उम्मीद तो मुझे नहीं थी, मतलब नमन धीर से तो थी बट प्रिंस यादव से नहीं थी। अब देखो प्रिंस यादव से उम्मीद क्यों रखनी है, क्योंकि वो बॉलर हैं, उनसे बैटिंग की उम्मीद थोड़ी ना करेंगे, बैटर से ही तो उम्मीद करेंगे बैटिंग की। और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी हमें वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे रन मारे हैं वहाँ पर। शे होप बोल लो इन्हें, भाई ये लड़का कप्तान है, ये लड़का विकेट कीपर है, ये लड़का सब कुछ है। मतलब 50 बॉलों में 102 रन, 9 छक्के, 4 चौके, और उसके बाद अपनी टीम को इन्होंने 24 रन से जिता भी दिया। और सीरीज टाई हो चुकी है 2-2 पर, बट अभी भी मैं बोलूँगा यही बात कि ये तो बस अंगड़ाई है आगे, और लड़ाई है आगे आने वाला है मैच जल्दी ही, और उस मैच के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो मैच होने जा रहा है शनिवार को, और इस मैच के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 17 तारीख को ये मैच होने जा रहा है चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, और वहाँ सभी को पता है बैटिंग पिच रहती है, लंबा स्कोर बनने जा रहा है वहाँ पर। बट अगर बात करें हैदराबाद की, जैसे हैदराबाद में मैच हुआ था कल वाला, तो कल वाला मैच जो था ना, वो एग्जैक्टली टीम इंडिया पहला मैच हारी है, अगर बोले तो T20 का पहला मैच हारी है उस ग्राउंड पे। तो ठीक है, अब हार गई तो हार गई, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, रेडियो महारानी पर गाने चला सकते हैं। तो सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी पर गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, बातें और गाने चलते रहेंगे, ये मेरा वादा है आप सभी से। और हाँ, एक और वादा है कि इस शो में सबसे कम एड ब्रेक्स आपको सुनने को मिलेंगे, तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

आप रेडी हो जाइए एक मैजिकल फेस्टिव इवनिंग के लिए. एंटरप्राइजिंग डिवास एंड मिस्टर प्रदीप कुमार, काउंसलर वार्ड नंबर 4 गुरुग्राम, ऑर्गेनाइजिंग दिस डांडिया नाइट एट पदम ग्रीन्स फार्म, पालम विहार, गुरुग्राम, सैटरडे 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से. और सबसे बड़ी खुशखबरी, एंट्री बिल्कुल फ्री है. के साथ आइए, डांडिया के बीच पर झूमिए और सेलिब्रेट कीजिए एक यादगार फेस्टिव नाइट. स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज ओपन है. बुकिंग और डिटेल्स के लिए कॉल करें 9818629499 और 9650500285. एंटरप्राइजिंग दीवास प्रेजेंट्स डांडिया नाइट मैजिक एंड रेडियो महारानी 89.6 FM इज योर रेडियो पार्टनर.

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एन एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: आप में से बहुत सारे लोगों ने कैब तो जरूर बुक की होगी, लेकिन कभी आपने ड्राइवर की कहानी जानने की कोशिश की है? और क्या हो अगर वो कहानी एक फीमेल कैब ड्राइवर की हो? हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ी है वो कैब सर्विसेज की तरफ से सुमायला। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और सुमायला से हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, बट सुमायला एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, आज आप अपने परिवार को किस तरह से सपोर्ट कर पा रही हैं?
1: मैं अपने घर वालों को सपोर्ट ड्राइविंग करके कर पा रही हूँ, और जो सपने थे उनके
0: okay.
1: वो उसके जरिए पूरे कर पा रही हूँ।
0: तो बचपन में कुछ ऐसा सोचा था कि मैं बड़े होऊंगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी?
1: मेरा सपना था डॉक्टर बनने का।
0: अच्छा, चलो डॉक्टर बन नहीं बन पाए, बट हाँ,
1: लेकिन बट ड्राइवर बन के तो मुझे और अच्छा कॉन्फिडेंस भी आया और बहुत अच्छा भी लगा।
0: ओके, अब बचपन में जो ये डॉक्टर बनने का सपना था, देखो बचपन चंचल होता, सबका दिमाग एक जगह तो दिखता नहीं है। मेरा भी बचपन का सपना था एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये बनूंगा, कुछ नहीं बना। रेडियो में बातें कर रहे हैं हम लोग आपसे, तो ऐसा सपना आता कि एक बार तो ड्राइव वाला सपना मेरे मन में भी आया था। कभी बचपन में ऐसा सपना आया कि बड़े होकर मैं ये गाड़ी चलाऊंगी? मतलब ऐसे
1: मेरे को, मैंने अपनी सबसे पहले सिस्टर को देखा।
0: ओके,
1: उन्होंने ड्राइविंग करी पहले okay. तो उन्हें देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि जब ये चला सकती है महिला होके तो मैं भी चलाऊंगी।
0: बिल्कुल,
1: मैंने भी सीखी। फिर
0: कभी मन में क्यों आता है कि मतलब काफी बार लोग कहते हैं रोकते हैं,
1: उन लोगों को लगता है कि महिलाओं को चलाना अच्छा नहीं है, घर में काम काज करे बस यही सही है, मर्दों का काम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को भी चलाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो, कॉन्फिडेंस लाओ।
0: कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को अनसेफ फील हुआ हो कैब ड्राइव करते वक्त?
1: नहीं सर, अनसेफ फील नहीं हुआ, पूरी सेफ्टी होती है।
0: ओके, पूरी सेफ्टी होती है। तो ये है वो कैब सर्विसेज जहाँ पर एक फीमेल राइडर आपके साथ आएंगी, और दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स। वो कपल फॉर्म है वुमेन ऑक्यूपाइड कार, कैसे कार। तो इसी के साथ साथ और भी ढेरों बातें होती रहेंगी सुमायला के साथ, मगर अभी आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, बात करने यूँ ही।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: फरीदाबाद की सड़क हो या फिर दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक, आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग, डेली चैलेंजेस और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस की, क्योंकि मेरे साथ वो कैब सर्विसेज से हमारी गेस्ट सुमाइला मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। तो सुमाइला वेलकम बैक हमारे साथ स्टूडियो में। पहले तो
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम वेलकम वेलकम। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि पैसेंजर्स काफी बार बैठते हैं वो सेफ फील नहीं करते हैं, तो पैसेंजर्स को सेफ फील करवाना आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: सर उन्हें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम उन्हें सेफ फील कराएं, क्योंकि हर कोई एकदम लड़की को देख के भरोसा नहीं कर पाता कि ये चलाएंगी, कहीं ठोक ना दे, गाड़ी ना लगा दे, इसलिए हर कोई एकदम लड़की पे भरोसा नहीं कर पाते।
0: ओके।
1: लेकिन हम उन्हें इतना भरोसा दिलाते हैं कि लड़कियां भी सेफली पहुंचा सकती हैं।
0: ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो और कोई ऐसा पैसेंजर बैठा हो जो पहले तो घबरा रहा हो बट उतरते वक्त उन्होंने बोला हो क्या बात है?
1: हाँ सर होते, बहुत से बोलते हैं कि हमें तो बहुत डर लगाता है कि आप सेफ पहुंचाओगी नहीं, लेकिन जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि लड़कियां भी सेफली पहुंचा सकती हैं।
0: क्या बात है। तो रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, मेरे साथ सुमाइला मौजूद है स्टूडियो में वो कैब सर्विसेज की तरफ से, और पैसेंजर सेफ्टी के बारे में तो बात कर ली मगर थोड़ी बहुत और भी बातें करेंगे मगर इस गाने के बाद। मैं हूं गौरव आपके साथ, आप सुन रहे हैं शो HR 896।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: अब आप सब लोग ना एक चीज इमेजिन करिए, स्टीयरिंग व्हील हाथ में, कॉन्फिडेंस चेहरे पर और मंजिल अपनी नजरों में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आज रेडियो महारानी पर मिलते हैं वो कैब सर्विसेज की एक टैलेंटेड ड्राइवर से, उनका नाम है सुमायला, जो कि मेरे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। तो सुमायला, जब आप ड्राइवर बनी तो सबसे पहला तो ये सवाल आएगा कि करियर, जब इसको बनाते हैं हम लोग कैब ड्राइवर, जो कि एक करियर होता है, मेल्स में बहुत देखा जाता है, फीमेल्स में बहुत कम देखा जाता है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या रिएक्शन था कि मैं एक कैब ड्राइवर बनने जा रही हूँ?
1: सर, मैं तो खुश थी कि मैं एक महिला हूँ और मुझे ड्राइविंग करने का मौका मिल रहा है और मैं चलाऊँ।
0: ओके, और फैमिली का क्या रिएक्शन था?
1: मेरे मदर का तो बहुत अच्छा रिएक्शन था कि मेरी बेटी कार चलाएगी और क्या कहते हैं, सपनों को भी, अपने भी पूरा सपनों को करेगी और हमारे भी, और हमें भी गाड़ी में घुमाएगी।
0: तो आपने कभी बोला नहीं, चलो मम्मी आपको गाड़ी सिखा देती हूँ?
1: मेरी मम्मी कहती है कि मैं भी सीखूंगी।
0: अच्छा, ऐसा मेरी मम्मी भी कहती है, मैं मना कर देता हूँ मम्मी को।
1: नहीं, मैंने मना नहीं करा मम्मी को,
0: मम्मी को इसलिए मना किया, मैंने कहा आप क्या करोगे, आप गाड़ी चलाएंगे, हम लोग हैं ना चलाने वाले।
1: मैंने अपनी मम्मी से कहा, जब हम, आपने हमें सिखाया तो हम आपको जरूर सिखाएंगे।
0: क्या बात है, और ऐसे ही और भी ढेरों बातें होती रहेंगी रेडियो महारानी पर। बट हाँ, इससे पहले कि मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लूं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, रिश्तेदारों ने क्या कहा?
1: रिश्तेदारों ने सबने मना करा कि लड़की के ऊपर ड्राइविंग सही नहीं रहती, ये ज्यादातर लड़कों पे ही अच्छी लगती है ड्राइविंग, तुम कंप्यूटर सिखा दो या कुछ और सिखा दो। लेकिन मेरी मम्मी ने ये कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को यही सिखाऊंगी। हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ साथ और भी सवाल जारी रहेंगे, बट इस गाने के बाद। रेडियो महारानी पर मैं हूँ गौरव, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमायला फ्रॉम वो कैब सर्विसेज।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: हर यूनिफॉर्म के पीछे एक कहानी होती है और हर सफर के पीछे एक सपना। आज वो कैब सर्विसेज की हमारी गेस्ट से जानेंगे उनकी मेहनत, उनके एक्सपीरियंस और उनकी सक्सेस की कहानी। बट उसी के साथ साथ सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ वो कैब सर्विसेज से जुड़ी है सुमायला। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। सुमायला, एक बात सबके मन में आती है कि लड़की है, गाड़ी चला रही है, तो क्या ये सेफ है? और दूसरी चीज, क्या लोग इन्हें तंग नहीं करेंगे? तो तंग की जब बात आती है तो बात आती है सेल्फ डिफेंस की।
1: जी,
0: वो की सेफ्टी ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया गया है?
1: वो की ट्रेनिंग में सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट एड, ये सब सिखाया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारे साथ क्या हो जाए।
0: ओके, और अगर मैं सेल्फ डिफेंस की बात करूँ तो उसमें क्या क्या चीजें, कुछ ऐसी चीज जो आपको लगा ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: सारी चीजें उसमें इम्पोर्टेंट होती है, मतलब कोई छुए या आपसे बदतमीजी करे, छेड़छाड़, तो उसमें आपको कैसे बचाव करना है, कैसे अपने आप को सेफली पहुंचना है,
0: कस्टमर को भी कैसे सेफली पहुंचाना है।
1: जी,
0: ओके। इसमें काफी बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को अनसेफ फील होता है, चाहे फिर वो मैन हो या वुमेन हो, आदमी हो, औरत हो, सबको कभी ना कभी एक पॉइंट आता है जब अनसेफ फील होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अनसेफ फील हुआ हो?
1: हुआ है एक बार।
0: ओके, तो क्या आप उसे शेयर करना चाहेंगी?
1: बस वगैरह में सर।
0: ओके,
1: ऐसे
0: बस में हुआ है, बट कैब चलाते वक्त कभी
1: में नहीं हुआ।
0: ओके, तो इसी के साथ साथ एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से हमारी सारी लड़कियों के लिए जो भी आपको आज सुन रही हैं।
1: मैं यही कहूंगी कि लड़कियों को सबसे पहले तो डरना नहीं चाहिए,
0: ठीक है?
1: और क्या कहते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो, और क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लाओ, जो अपने सपने अधूरे हैं वो पूरे करो। कि ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की ड्राइविंग नहीं कर सकती, लड़कियां सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली होती हैं और वो चला भी सकती है ड्राइविंग, हर कोई कर सकता है, महिला ज्यादा। जी,
0: तो ड्राइविंग तो क्या ही चीज है ना।
1: जी,
0: थैंक यू सो मच सुमायला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी सुमायला फ्रॉम वोक।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम। तो चलिए, इसी के साथ साथ और भी बातें होंगी, बट आज के लिए इतना ही। रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप, गौरव हूं मैं आप सभी के साथ। एंड अभी चला रहा हूं आप लोगों के लिए ये गाना, वापस आऊंगा और करते हैं।

गाइज यू नो वॉट, अब आपके फोन पे एक घंटी बजेगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन है जो हमें फोन कर रहा है। क्या वो इंसान है या फिर वो रोबोट है जो हमको फोन कर रहा है? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, और इसको लागू करने के लिए कह दिया है सरकार ने 1 नवंबर से। और इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमें कौन कॉल कर रहा है, और आजकल तो आप सभी को पता होगा कि फ़ोन नंबर से ही नाम लिखा हुआ आ जाता है कि कौन इंसान हमें कॉल कर रहा है, तो अब ऐसा ही होगा कि 1 नवंबर 2026 से सभी फ़ोन पर कॉल आने पर कॉलर के फ़ोन नंबर के साथ साथ उसका सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज उसका नाम दिखाना होगा। मतलब कि जैसे मान लेते हैं आपने जब नंबर खरीदा था ना, तो आपके नाम पर वो खरीदा गया था नंबर, यानी कि मेरा नाम गौरव है तो मेरे नाम पे खरीदा गया था वो नंबर। अब कल को मेरे नंबर से कोई किसी और को कॉल करे तो वो उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि गौरव कॉलिंग। अब ये चीज़ लागू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है सरकार ने, 1 नवंबर 2026 से सबके फ़ोन में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और ये सर्विस अभी सिर्फ 4G और 5G नेटवर्क के सभी यूज़र्स के लिए खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी, जबकि 2G 3G नेटवर्क अगर कोई यूज़ करता है तो उनके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। बट नो वरीज, आजकल तो सबके पास ही 4G और 5G नेटवर्क है, और जिनके पास नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास थर्ड पार्टी ऐप्स है, बट वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेफ नहीं होता हमारे फ़ोन के लिए। खैर, इसके अलावा इसमें मुझे लगता है एक चीज़ का फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि स्कैम कॉल्स कम हो जाएगी, क्योंकि पता लग जाएगा ना कि किसका फ़ोन आ रहा है। नंबर तो नहीं छुपा पाएंगे ना, बट ठीक है, स्कैमर्स जो होते हैं ना वो यहीं पर दिमाग लगाते हैं, पता नहीं कैसा दिमाग चलता है उन लोगों का। अच्छी जगह लगा लो, पैसा अच्छा कमा लोगे, बट नहीं, हमें तो स्कैम करना है। चलिए, इन सब के बारे में बातें और भी उतरेंगी और भी अपडेट्स लेकर आता रहूँगा, मगर अभी फ़िलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना गौरव।

क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जहां पर आपके बॉस या फिर आपसे जो सीनियर है वो आपको बोल रहे हैं बेटा कल से आने की जरूरत नहीं है, या फिर ये बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी अब आपके हाथ से जा चुकी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ गौरव आपके साथ है। और सपने में काफी बार हमारी नौकरी चली जाती है और उसके मतलब क्या होता है, उसका कोई ना कोई तो मतलब होता है कि नौकरी छूटना या फिर आप उसको निकाल दिया गया है। तो इसका सिंपल सा एक संकेत है, देखो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आने वाला है या फिर कोई परेशानी आने वाली है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको मिल सकता है, थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, बट भगवान न करे ऐसा कभी हो। दूसरी चीज़, इसमें ना पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन ये है कि ऐसा सपना इस बात की ओर एक इशारा करता है कि आप अपनी जो प्रेजेंट आपकी कंडीशन है ना, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप चाहते हो कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए। तो रियलिटी में भी शायद ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी बार ना साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, जैसे कि आपके मन में तनाव है, आप स्ट्रेस में हो और आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जिसमें आपको नौकरी जाते हुए दिख रही है, आपको लग रहा है कि आपकी जॉब आज छूट चुकी है, आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया है। और हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, क्योंकि ऐसे सपने ये दिखाता है कि हमारे अंदर घबराहट है, खुद को लेकर इनसिक्योर है हम लोग, या फिर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है?

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली।

अक्सर हम लोगों के मन में एक सवाल आता है और वो सवाल ये आता है कि क्या हमें जिम सुबह जाना चाहिए या फिर हमें जिम शाम को जाना चाहिए, है कि नहीं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। देखो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। और देखो, टाइमिंग कोई मैजिकल नहीं है। फैट लॉस और मसल गेन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जिम में अगर आप लोग जाते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं? दिन की एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो जाती है, वर्कआउट मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, स्केड्यूल बिजी हो तो मॉर्निंग वर्कआउट इजीली लॉक हो जाता है क्योंकि हमें पूरे दिन भर तो काम करना है, सुबह सुबह वर्कआउट करके आ जाएंगे, मूड और एनर्जी को बूस्ट मिल सकता है, जिम कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड मिलता है, मैंने तो ऐसे ही देखा है, लेस क्राउडेड होता है सुबह सुबह। और इसके अलावा वर्कआउट के बाद पूरे दिन एक्टिविटी मेंटेन करना ईजी हो जाता है। अच्छा, इसमें नुकसान ये भी हो सकता है कि बॉडी ना सुबह सुबह थोड़ी सी स्टिफ हो सकती है, इसीलिए प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एम्प्टी स्टमक तो हैवी वर्कआउट करना किसी भी मतलब सूरत में आइडियल नहीं है। और इसके अलावा अगर आप लोग शाम को जिम जाते हो तो शाम को जिम जाने के भी अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि बॉडी जनरली प्रॉपरली वार्म्ड अप होती है क्योंकि पूरे दिन भर काम किया है हम लोगों ने, दिन भर खाना खाया है, हाइड्रेशन मिलने की वजह से वर्कआउट भी अच्छा होता है, एनर्जी भी अच्छी हो सकती है और काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इवनिंग में बेटर फील होती है कि नहीं, क्योंकि दिन भर खाना खाया आप लोगों ने, बॉडी में कार्ब्स लोड करे हैं और अगर कार्ब्स लोड करें तो उसकी वजह से एनर्जी तो आएगी ही। और इसके अलावा अगर आप लोग काम करते हैं या फिर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसकी वजह से सारा स्ट्रेस भर जाता है, तो स्ट्रेस रिलीज करने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है शाम का वर्कआउट। अगर आप लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं या फिर इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट टाइम शाम का ही है। और अगर हम लोग बात करें नुकसान की, तो शाम को जिम यूजुअली क्राउडेड होता है तो बहुत लेट इंटेंस वर्कआउट करने से कुछ लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, तो बेस्ट टाइमिंग वही है जो आपको कंसिस्टेंट रख पाए। अगर मसल गेन प्रायोरिटी है तो टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सफिशिएंट प्रोटीन, कैलोरीज प्लस स्लीप प्लस कंसिस्टेंसी। और इसी की तरह और भी अपडेट्स और भी ज्ञान मैं देता रहूँगा आप सभी को रेडियो महारानी 89.6 पर। अभी फिलहाल सुनते रहिए इस गाने को, गौरव हूँ आप सभी।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है, मिर्जापुर द मूवी। अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: फरीदाबाद में वैसे ही बहुत सारा कचरा था, ऊपर से बारिश हो गई, कचरा थोड़ा सा और उसके ऊपर तैरने लग गया, और किसी किसी जगह पे तो ऐसा हो गया वहां से बिना नाक बंद करे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।

ये चीज नोटिस करना। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवरात्रों में ऐसा होता है, जब ये ना नवरात्रे आते हैं तो इसमें चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। देखो अब ठंडा सा होने लग गया ना सुबह शाम, तो ऐसे ही मौसम चेंज होगा। खैर बारिश हो गई आज तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। तो जब भी मौसम चेंज होता है, अगर आप उस टाइम फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है बहुत ही ईजिली इस मौसम चेंज को, और फिर आपको कोई भी बीमारी इतनी ईजिली टच नहीं कर सकती। और अगर बीमारी की बात करें तो इस टाइम पता है कौन सी बीमारी फैल रही है? थोड़ा बहुत डेंगू, बहुत थोड़ा सा, बहुत माइनर सा। उसके अलावा सर्दी जुकाम फैल रहा है फिर से। डॉक्टर की दुकानों के बाहर लाइन लग गई है, दुकान तो नहीं बोलूँगा, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लाइन लग गई है। अगर कोई डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दुकान नहीं होती, क्लिनिक होता है, आई नो, बट ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ मैं लेता हूँ इजाजत, मिलूंगा आप सभी से कल शाम, कल तो फ्राइडे ब्रो, कल शाम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। गौरव है मेरा नाम, बाय बाय, सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उन लोगों के लिए जो थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका फेवरेट डायलॉग है ओटीटी पर आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओटीटी पर अक्टूबर भी काफी लोडेड है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, Z5 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर नई मूवीज और शोज लगातार आ रहे हैं। मतलब वीकेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये नहीं होगी क्या देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कैसे देखें। और फिर वही क्लासिक सिचुएशन, नेटफ्लिक्स खोलो, 20 मिनट थंबनेल देखो और फिर एक दूसरे से पूछो कुछ अच्छा है, नहीं पता, चलो पुरानी वाली मूवीज ही लगा लेते हैं। भाई ओटीटी पर हजारों ऑप्शन है, लेकिन हमारा दिल फिर भी वही 3 शोज पर अटका हुआ है। तो इस हफ्ते थिएटर हो या ओटीटी, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, बस एक चीज रेडी रखिए, पॉपकॉर्न। और
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: दिवाली अपनी खुशियों में जोड़िए शॉपिंग का चार्म, फैशन का ग्लैमर और सेलिब्रेशन का म्यूजिक। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली लाइफस्टाइल एग्जिबिशन। एक्सप्लोर एक्सक्विजिट फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटीफुल फेस्टिव डेकोर, यूनिक गिफ्ट्स, डिलीशियस फूड एंड सो मच मोर, ऑल अंडर वन रूफ। Mark your calendars, 16th, 17th and 18th October 2026, Friday, Saturday or Sunday, Community Center, Sector 15, Faridabad में। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आइए और इस फेस्टिव सीजन को बनाइए ट्रूली स्पेशल। मोहना प्रेजेंट्स द दिवाली एग्जिबिशन। शॉप, सेलिब्रेट, इंस्पायर।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
1: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15th अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
3: द दिवाली सवारी बाय इलाहे बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ. आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना. अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था. लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज. और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी. उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है. यानी बिल्कुल हमारी तरह आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं. एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल. मैसेज पढ़ लिया जाता है, जवाब नहीं आता है. किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती. और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है. उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले. अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना. हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता. कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट. और दिल बहुत कामली कहता है रियली. फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है. और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स आ गई हैं, लेकिन इंतजार अभी भी वही है. मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM. सेगमेंट है इश्क शायराना और अब है दिल को थोड़ा और फराज में बनाने का वक्त. एक म्यूजिकल ब्रेक का स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है.

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहां आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंचकर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था। और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं, उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदी हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नई कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत। और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुड बाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा। फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस, आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है। किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो। वही फराज का मैजिक है, वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है, कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं। तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। तो आज की रात हमने की फराज साहब के नाम। अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है

धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती है जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो जरूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है।

0: बाजियां।
1: एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि

क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुंच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता ना?

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एनर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ

अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो उड़ता तीर पर नजर डालिए, क्योंकि कभी कभी सिनेमा में गोली से ज्यादा डेंजरस होता है गलत समय पर बोला हुआ एक डायलॉग। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल। एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं,
3: कुछ हटके।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जय श्री हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निस्सार, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद।

सत्ता गुरु चरणों में क्या बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता फिर आप कह देते पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश मंत्र नाम और शासन और दुलार इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है दूसरा नहीं।

आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी। अरे शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं, नाव सच्चिदानंद में ही, वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक, और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही। चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं, कहलाते हैं श्री जी के और चाहते हैं विषय सुख, चाहते हैं संसार का अनुकूल भाव, कैसी विपरीतता है, कैसी विपरीतता, बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। अब इस विचित्रता में भारी विचित्रता गुरुदेव की कृपा है, बस ऐसी दुरंत माया को परास्त करके आपको निकाल के श्री जी से मिला दे, वो एक ही शब्द है केवल, वाहे गुरु बोलो, सदगुरु बोलो, गुरु बोलो, गुरुदेव जय गुरुदेव कुछ भी बोलो, वो एक ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा नहीं। बड़े कृपाल, कृपा की मूर्ति, कृपा रूप जो वपु धरयो, साक्षात प्रिया प्रीतम की कृपा मूर्तिमान देह धारण करके हमें उस महासुख में निमग्न करने के लिए घसीट रहे। अपने लोग संसार के थोड़े सुख देने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा ये सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधावल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय